सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि, तदनुसार 22 जून साल 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C.J. Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
3: लदे वृक्ष सहनशीलता के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। तभी तो जब हम उन्हें पत्थर मारते हैं तो वो बदले में हमें फल देते हैं। वास्तव में सहनशीलता हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। हम जितने सहनशील होंगे उतने ही शांत और विनम्र भी होंगे। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम परेशान हो उठते हैं। अनेक परिस्थितियां हमें झकझोर देती हैं, हमारी सहनशीलता डगमगाने लगती है। यदि उस क्षण हम अपना संतुलन खो देते हैं तो उसका परिणाम सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं होता। एक क्षण में बिगड़ा संतुलन हमारी सहनशीलता के सिंहासन को चकनाचूर कर देता है। इसलिए उस क्षण बहुत सावधान रहें, अपने मन पर पूरी शक्ति से काबू रखें और सहनशीलता पर आघात करने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करें। एक बार एक जिज्ञासु संत कबीर के पास आया, बोला, मेरे सामने एक अजीब प्रश्न है, मैं गृहस्थ बनूं या संत बनूं? कबीर कपड़ा बुन रहे थे, प्रश्न सुना और बोले, चिंता ना करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, इसके बाद अपना काम करते रहे। वो व्यक्ति अगले दिन फिर आया, वो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था। दोपहर का समय था, धूप निकली हुई थी। कबीर ने अपनी पत्नी को पुकार कर कहा, जरा दीपक जला लाना, सुई कहीं गिर गई है, खोजना चाहता हूं। उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कबीर की पत्नी सचमुच दीपक जलाकर ले आई। कबीर ने पास ही पड़ी सुई उठाकर रख ली, पत्नी दीपक लेकर वापस चली गई। अब उस व्यक्ति से रहा न गया। उसने पूछा, महाराज ये क्या है? धूप की तेज रोशनी में आपने दीपक मंगवाया और आपकी पत्नी दीपक ले आई, उसने ये भी ना कहा कि भला धूप के होते दीपक? कबीर ने हंसते हुए उसे रोक कर कहा, गृहस्थ बनना है तो ऐसी ही सहनशीलता होनी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर शेष था। अगले दिन वो व्यक्ति फिर आया, कबीर उसे लेकर एक महात्मा के पास गए। उन महात्मा की कुटिया एक ऊंचे टीले पर थी। दोनों टीले की ऊंची चढ़ाई पार कर पहुंचे। महात्मा से कबीर की बातचीत होने लगी। कबीर ने बातचीत के दौरान महात्मा से पूछा, आपकी उम्र क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, 80 साल। फिर बातचीत होने लगी। कुछ देर बाद कबीर ने फिर प्रश्न दोहराया। महात्मा ने कहा, बेटा 80 साल। जब बातचीत पूरी हो गई तो चलते समय कबीर ने फिर पूछा, महात्मा जी आपकी उम्र कितनी है? महात्मा ने उसी शांत भाव से कहा, बेटा 80 साल। वापस आते समय टीले से आधी दूर आने पर कबीर ने फिर आवाज दी, महात्मा जी आपकी उम्र कितनी है? महात्मा कुटिया से बाहर आए और बोले, बेटा 80 साल। कबीर और वो व्यक्ति जब टीले से नीचे आ गए तो फिर आवाज दी, महात्मा जी आपकी उम्र क्या है? महात्मा ने अपनी कुटिया से बाहर आकर उत्तर दिया तो कबीर ने इशारे से कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस पर महात्मा टीले से नीचे उतर कर आए और बोले, बेटा 80 साल। वो व्यक्ति उन महात्मा को देखकर हैरान था कि उन्हें एक भी बार गुस्सा नहीं आया और वो बार बार शांत भाव से उत्तर देते रहे। बाद में कबीर ने कहा, यह था तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगर महात्मा बनना है तो ऐसा ही सहनशील बनना होगा। सहनशीलता कई बार हमारे भविष्य की परेशानियों से बचा लेती है। आज जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं वे सदा नहीं रहने वाली। आज यदि हम उन्हें सहन कर लेते हैं और शांति से आज का समय गुजार देते हैं तो कल हमें इसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा।
2: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। वाचन स्वर थे अनिल भारती के। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोतो लीजिए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसकी शुरुआत करते हैं मातृवंदना से।

प्रथम पूज्य हैं गणराया, मंगलमय जिनका साया। जिस घर गूंजे नाम तुम्हारा, वहां सुख का हो उजियारा।

माँ दुर्गा के चरणों में है सारा संसार, उनकी कृपा से खिलता है जीवन का हर द्वार। साहस, शक्ति और विश्वास की वे पहचान, माँ के आशीर्वाद से बनता है हर काम आसान।

ईश्वर हर कण में बसते हैं, हर दिल में उनका वास है। जो प्रेम और सत्य के पथ पर चलें, उसी के साथ उनका आशीर्वाद है।

ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वही है जीवन का आधार। उनकी कृपा से जग चलता, उनसे ही होता सबका उद्धार।

दिखते नहीं पर साथ हमेशा रहते हैं, गिरने पर हमें संभाल लेते हैं। विश्वास की ज्योति जो मन में जलाए, ईश्वर उसे सही राह दिखाते हैं।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायन स्वर थे महेंद्र कपूर के। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय 6:50। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 9:10 आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बुधारी ताती से बातचीत। सुबह 10:30 पर पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी में आज आप सुनिएगा पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर चंद्रमौली गद्दा मानुगु से बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शैल संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के

0: स्वर में कुमाऊनी लोकगीत, समय रहेगा सुबह 7:30 पर। सेहत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:45 पर। सुबह 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आज आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित रविलाल टूडू से बातचीत। एक कलाकार में आज आप सुनेंगे अभिनेता अमरीश पुरी पर आधारित फिल्मी गीत समय रहेगा दोपहर 4:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 11:00। दोपहर 12:10 पर पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित श्री एस के एम मौली नंदन से बातचीत। दोपहर 12:20 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा दिवाकर गांगुली के स्वर में भजन। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम घर गृहस्थी आप सुन सकेंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा उषा कोठनाला के गाए रुहेल खंडी लोकगीत समय रहेगा सुबह 10:45 पर। दोपहर 2:30 पर सैनिकों के लिए फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे कैप्टन सुनील कुमार चौधरी की वीर गाथा। पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी में दोपहर 3:10 पर आज आप सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर पुनिया मूर्ति नतेसन से बातचीत, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा सतेंद्र नामदेव का पखावज वादन, आप प्रस्तुत करेंगे धमार ताल। शाम 5:10 पर पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी में आज आप सुनिएगा पद्मश्री से सम्मानित श्री विजय नाथन काम कोटी से बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:35 पर। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसमें आज आप सुनिएगा श्री महेंद्र प्रसाद ध्यानी का गढ़वाली काव्य पाठ। शाम 6:10 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित श्री अशोक कुमार हल्दर से बातचीत। कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:07। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेमंत कुमार के गाए गीत। कार्यक्रम स्पॉटलाइट का समय रहेगा रात्रि 9:15 पर। और शाम 7:25 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनना ना भूलेगा पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहन नागर से बातचीत। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः INS दुनागिरिः, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तीन उक्तम यत एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सांप्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्श दातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसंपन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित संदेशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायुः स्रवण घटनायां 7 जनाः मृताः, 77 श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा 3-सदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है। नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल

0: डिस्ट्रिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning 3 indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak and anti-submarine warfare shallow water craft Agra yesterday. Mr. Modi said India's journey from INS Vikrant to this date is not just about new warships but towards increasing self-reliance.
0: INS Vikrant se lekar aaj tak ki yatra keval naye yuddhapoton ki yatra nahi hai. Ye Bharat ki बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्र

0: इसी गीत के साथ चित्र रागिनी का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी। प्रशासन ने यात्रा प्रभावित होने संबंधी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS गंगागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के दनिया स्थित राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी तेजी से विकास हो रहा है। उत्तराखंड भी तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आयुर्वेद और योग आधारित पर्यटन के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल की अवधारणा के तहत मेले और स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों को नई पहचान दी जा रही है। इससे स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
1: प्रदेश में चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है। रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में 20 जून को हुई घटना के संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ माध्यमों से यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, जिनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें तथा केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
4: नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत, और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है, गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
1: इस बीच पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां ठहरे कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच एक विषय को लेकर विवाद की स्थिति बनी ही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार संबंधित पक्षों के साथ संवाद कर रही है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं और यात्रियों का गुरुद्वारे में आवागमन सामान्य रूप से जारी है, लंगर, अरदास और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की उन्होंने अपील की है।
5: मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें।
1: कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर तथा उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीए एलएलबी, बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उधर पौड़ी जिले स्थित गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में नए शैक्षणिक सत्र से 3 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें बीसीए, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तथा एमटेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल है। नए पाठ्यक्रमों के शुरू होने से विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए राज्य के पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 22 से 25 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना है, जिससे वर्षा गतिविधियों में और भी वृद्धि हो सकती है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत में एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है और पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण और नवोदय टाइम्स ने मुख्यमंत्री धामी के हवाले से शीर्षक दिया है, उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाएंगे। नीट की पुनः परीक्षा सकुशल संपन्न, हर केंद्र पर फॉरेंसिक जांच होगी। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है कि नीट यूजी परीक्षा देश विदेश के 5,000 से अधिक केंद्रों पर संपन्न हुई। रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश, हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हवाले से अमर उजाला लिखता है, रक्षा मंत्री से उत्तराखंड में सेना की अधिक भर्ती कराने का किया गया आग्रह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित तीन नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी। प्रशासन ने यात्रा प्रभावित होने संबंधी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कुमाऊं विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के स्वर में गाए कुमाऊनी लोकगीत, जिसमें सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुंदन सिंह की आवाज में ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: रविंद्र ये बताओ, सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में, क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के स्वर में गाए कुमाऊनी लोकगीत। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं ज्योति उप्रेती सती के स्वर में ये अगला कुमाऊनी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। आइए अब सुनते हैं हयात सिंह के स्वर में ये अगला कुमाऊनी लोकगीत।

ಲಕಳ ಕೇಳುವ ಲಕಳ ಕೇಳುವ ಈಜುಕಿ ಲಾಡಿಲಿ ಚಲಿ ಸಜುಕಿ ಕೇಳುವ

0: हयात सिंह के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ शैल संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का
1: धन्यवाद। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोलो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD बेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।

0: भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होंगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं ब्रिटनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों

0: बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकित आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: ऐसे करते व्यक्ति लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज के तुलने के लिए हम सोचा, समाज जागरूक के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा

0: परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के गुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर हाजिर हूं मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी दानुपुंडी। श्रोताओं, आज महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून 1900 को तत्कालीन पूर्व बंगाल में हुआ था। वे भारत के उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में कार्य करते रहे और चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से शामिल थे। सन 1930 में हुए ऐतिहासिक चटगांव आर्मनी रेड में गणेश घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस साहसिक अभियान का उद्देश्य अंग्रेजी शासन की सैन्य शक्ति को चुनौती देना और स्वतंत्रता की अलख जगाना था। इस घटना ने पूरे देश में क्रांतिकारी चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गणेश घोष को कई बार जेल जाना पड़ा।

उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों और देशभक्ति से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वे समाज और राष्ट्र की सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया। श्रोताओं, इस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर आज पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों का। पीएम मोदी की अगुवाई में हजारों लोगों ने किया योग, सेना पुलिस की निगरानी में हुई नीट परीक्षा, 5 जिलों के सरकारी स्कूलों में होगी मिड डे मील की जांच, लोग पानी के लिए परेशान, जल संस्थान के पास नहीं है समाधान, केशव विहार में एक महीने से अधिक समय से कम दबाव से आ रहा पानी, परिचालकों की हड़ताल हुई खत्म, 10 दिन से खड़ी स्मार्ट सिटी की बसें दौड़ी, होमगार्ड भर्ती में 1294 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में रहे सफल, जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, दून अस्पताल को मिलेगी दूसरी MRI मशीन। और अब खबर मौसम से जुड़ी, चटक धूप ने बढ़ाई उमस, आज राहत के आसार, मैदान के साथ पर्वतीय इलाकों में भी सामान्य से ऊपर रहा पारा, 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान का अलर्ट। तो श्रोताओं, ये तो थे क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों में। आज का दिन यानी कि 22 जून का दिन क्यों है खास, तो आपको बता दें कि 1844 में येल यूनिवर्सिटी में डेल्टा कप्पा एस्प्लेन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और साल 1911 की बात करें तो आज ही के दिन किंग जॉर्ज वी को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था। साल 1939 की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1941 की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 22 जून को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा के तहत सोवियत संघ पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण शुरू किया था। 1643 की बात करें तो महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली को कैथोलिक चर्च द्वारा अपने इस विचार को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। साल 1986 की बात करें तो अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार डिएगो माराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल मैच में अपना प्रसिद्ध हैंड ऑफ गॉड गोल किया था। 1932 की बात करें तो आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो था इतिहास के पन्नों में 22 जून का दिन क्यों है खास। बढ़ते हैं कार्यक्रम में एक और म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज 22 जून को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वर्षा वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कराना और उनके संरक्षण के लिए उन सबको प्रेरित करना है। वर्षा वन पृथ्वी के सबसे समृद्ध प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। इन्हें धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दुनिया की लाखों वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियां वर्षा वनों पर निर्भर है, लेकिन आज बढ़ती कटाई, अवैध खनन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा वनों का अस्तित्व खतरे में है। जंगलों के नष्ट होने से जैव विविधता प्रभावित होती है, मौसम चक्र में बदलाव आता है और वैश्विक तापमान बढ़ने लगता है। तो श्रोताओं, प्रकृति की रक्षा केवल सरकारों की ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। पेड़ लगाना, वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और प्राकृतिक संसाधनों का सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हमारे लिए छोटा हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हम सभी के

इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओ, हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रगतिशील और जनवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की आज पुण्यतिथि है। श्रोताओ, वे हिंदी के छायावाद और प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनकी कृतियों की बात करें तो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, नींद के बादल और अपूर्वा थे। उन्हें साल 1986 में उनकी कविता संग्रह अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी नवाजा गया। साल 2000 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया। वो कहते थे, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा, लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा। तो श्रोताओं, आज केदारनाथ अग्रवाल की पुण्यतिथि पर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? यदि आप अपना कोई फीडबैक या अपने विचार हमें देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। तो आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर भेज सकते हैं, और आपका पत्र मिला लिखना ज़रूर, सबसे ऊपर आपका पत्र में लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके मैसेजेस और फीडबैक जो है आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो श्रोताओं, आज बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम जैसा भी लगता हो, और जिनके मैसेजेस आपका पत्र मिला में शामिल अगर नहीं हो पाते हैं, तो वो दोबारा भेज सकते हैं, क्योंकि शायद बहुत सारे मैसेजेस एक साथ शामिल नहीं हो सकते। तो इसी के साथ अपनी दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से ये गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम असली नकली।

इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके पहले अब सुनते हैं पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी में डॉक्टर बुधारी ताती से मुलाकात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: बुधरी ताती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
3: हम जैसे जंगल में गांव में रहने वालों को चयनित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें खुश है। हमारे जो समाज के लोग भी संकुचित रहते थे, बिना उनको कोई पूछताछ नहीं, ऐसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा जो मिल रहा है उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
2: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव हीरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहां पर पैदल पैदल जाते थे, वहां काम करते थे सेवा भाव पे, ऐसा ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे 4 भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग भी 2 बहन 1 भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
2: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी इलाकों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही है, ये सब आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया?
3: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना देखने के बाद मैं वापस आई, और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो जहाँ भी हो, हजारों बहने अनविज्ञता कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है और मैं इस क्षेत्र में 1986 में ही काम शुरू की, और विशेष करके अब उन्मार को पहले चुई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, और वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करना है तो एक आदमी से नहीं होगा, यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ में काम होगा। 1986 से ही निरंतर साल भर का पूरे 500 गांवों को संपर्क में ली हूँ, एक लक्ष्य रखी हूँ, सबसे पहले मैं 500 गांवों को संपर्क करूंगी, और इसी समाज से जो बहने मिलेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करना होगा, उनको प्रशिक्षित देना है और कार्य काम कैसा करना है, मैं उन्हीं से स्टार्ट की हूँ। 15-20 साल से 30-35 साल की बहनों को हमने यहाँ पर वापस उनको लाते थे, लाने के बाद उनको साक्षरता सिखाए, उनको एकदम बच्चे जैसा पकड़ पकड़ के उनकी बड़ी बहनों को सिखाना, मन थोड़ा तकलीफ तो है, जैसा गिल्ली मिट्टी को आकर देना सरल होता है, पर वैसे बड़े लोगों को कठिन परिस्थिति में भी सीखे हैं, तो मैं उनको साक्षरता सिखाने के बाद ही ये सब कार्य शुरू किए हैं, और उनके कारण से सब बहुत अच्छा सफल भी मिला है और कार्य करने में गति हो गया, कि क्योंकि 1 साल हमने पूरे गांव को देखे हैं, परिस्थिति देखे हैं कि इनको कैसा किस टाइप के काम करना है, क्योंकि हम लोगों को देखने से, हमारे समाज के लोग हैं जंगल इलाका में रहने वाले, हम लोगों को देखने के बाद ही दोबारा हमारे सामने आना पसंद नहीं करते थे। ये सारे कठिनाई देखने के बाद जो है हम लोगों के मन में ऐसा एक तो काम हुआ कि इनके बीच में हमको बड़े ठोस रूप से काम करना चाहिए। करीबन 150 तक ऐसी बहने, पूरी टाइम काम करने वाले बहने भी साथ दिए और साथ मिले कि हम काम को पहला ही ऐसा है।
2: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
3: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समाज में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है, उनके पास उठना बैठना, उन लोग जैसा रहते हैं उनके साथ रहना, जो खाते हैं उनके साथ खाना, और जैसे कभी ठंड में है तो बिना कपड़ा के सोते रहे, अभी तो विकास हुआ। उस समय उनको पहनने के लिए एक साड़ी होता था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास एक कंबल होना मैंने बहुत बड़ी बात समझते थे। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तकलीफ हुआ है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है। उनके साथ काम नहीं करती तो उनके बीच में नहीं जाती, तो शायद काम करने का मुझे भी इतना अनुभव नहीं होता कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे। उनके पास टैलेंट जाने के कारण, इतना घूमने के कारण, ये सभी उस समय रास्ता नहीं होता था, कभी साइकिल जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता था, जैसे गाय बैल जाता है ऐसी रास्ता से हम लोग पूरे समय में उनके पास पहुंचे गए।
2: आपने अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण देती थीं, या अभी भी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देती हैं?
3: इस समय तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसलिए मन में आया कि हमारे एक तो ऐसा गरीब स्थिति रहा, तो उस समय सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी देना है, संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है। तो ये मन में आया कि हम लोग उनको साक्षरता भी बनाए। साक्षरता लगभग 400-500 बहने उसमें साक्षरता ली है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, कभी स्कूल नहीं गए ऐसी बहनों को हमने साक्षरता बनाए, आत्मनिर्भर किए। दूसरा है कि हम लोग उनके पास जाते थे, कभी 1 पैसा 2 पैसा होता था, उस समय तो सीट का घर नहीं होता था, घास भूसा का घर होता रहा, वहाँ पैसा छुपा के रखना, फिर जमीन में गाड़ के रखना, कभी दिमाग पकड़ता रहा, कभी चूहा कतरता रहा। तो ऐसी लोगों को हमने आत्मनिर्भर करना, उनको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो कैसा करना होगा, उनको हम लोग उनको सिखाए, पास में लाए, समझाए। और बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहां तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले। उस समय उनके पास पैसा नहीं होता था, 500 रुपये 50 रुपये में हमने खाता खोले। बैंक मैनेजर से भी बात की है कि इनका आर्थिक स्थिति सुधारना है, इनको निर्भर करना है, उनको स्वयं पर स्वावलंबन बनाना है, तो आप भी इनको मदद करिए, 10 रुपया भी लाएंगे तो उनको खाता में जमा करिए। फिर सिलाई का प्रशिक्षण दिए, साथ साथ में कड़े बुनाई का काम किए, ऐसा आत्मनिर्भर उनको किए है, स्वयं सक्षम खड़े हो गए। और आज जो है 1-2 लाख हर महिलाओं में जरूर होगा।
2: महिलाओं के अलावा आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं।
3: क्योंकि उस समय बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, माँ के साथ मजदूरी करना या फिर मोबाइल इकट्ठा करना, आप जान रहे ऐसा उनका जीवन व्यतीत होता था। हमने सोचे कि उनको इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं का नागरिकता है, ये गाँव के होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं लोगों के भविष्य कैसा बनाना है। हम लोग सोच के एक बाल संस्कार केंद्र के नाम से हमने शुरू किए हैं, कई स्थानों में बाल संस्कार शुरू किए। 4 साल से 5 साल तक की हमने उनको साक्षरता, खेल कूद से हंसते हंसते कई प्रकार का करते हुए उनको आगे बढ़ाए हैं। 6 साल होने से हम लोग सीधा स्कूल में उनको भेजने का कोशिश किए हैं। तो ऐसी कई जगह में हमने बाल संस्कार केंद्र के रूप में किए हैं, कई बच्चों का आज ही भविष्य बहुत बना है, हजारों बालक बालिका है शिक्षा पाए हैं और स्कूल जाते हैं, जहां नहीं जाते वहां तक भी हमने इस सब किए हैं। आप स्मार चित्र जैसा हम लोग को देख के भागने वाले माता बहने आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आज कोई घर में रखवाली करने के लिए भी कोई नहीं, ऐसा बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छा सफल हुआ इसमें भी बच्चों का, आज ही अच्छे अच्छे पद में उन्होंने पहुंचा है, और अभी मिलते भी है तो बोलते हैं कि धन्यवाद दीदी, आपने हमको बहुत आगे किए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका जिंदगी अच्छा बन रहा है। वैसा कई बच्चों के लिए हमने काम किए शिक्षा के रूप में।
2: बुद्री जी, आपको इस इलाके के लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है, और ये नाम आपका कब और कैसे पड़ा था?
3: ये तो मैं 1986 में जब जाने लगी हूँ, तभी से लोग ये हमारे लिए पूरा चिंता करती है। एक हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो हम अच्छा लगता है, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा होता है, लोग आदर से उसको नाम नहीं लेते, बड़े दीदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम 1986 में जब मैं गाँव में जाती थी, लोगों के साथ बैठना उठना, हम तो बड़े को बड़े आदर करते हैं, माँ है तो माँ बोलते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को प्यार से नाम लेते हैं। वो हम लोग अपने आप उन्होंने चुने हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबका चिंता करते हमारे बड़े दीदी है, वैसा इस नाम से लोग अधिकतर लोग बोलते हैं। और आजकल तो माँ कह के भी पुकारना चालू किए। इस परिवार का हम लोग यहाँ का सब परिवार के एक सदस्य के समान है, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग हमको बड़े दीदी के नाम से छोटे से लेके बड़े तक नाम लेते हैं, तो अच्छा लगता है समाज में जाके, क्योंकि हम उस समाज से घुल मिल होके रहते हैं, समरसता एक मिलाते हैं, तो सबको एक समान होता है।
2: आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया है, तो ये आपने कब कहाँ और कैसे सीखा?
3: जड़ी बूटी का क्या है, मैं अकेले ने हमारे साथ में 7-8 बहने लोग हैं, तो हमारे बहनों में भी बहुत कुछ ही इस बारे में ज्ञान है। जैसे जड़ी बूटी इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जंगल में जितना भी रहने वाला हमको बचपन से नॉलेज है, और एकदम कमजोरी हो जाते हैं 6 महीना तक, साल भर तक लोग ऐसी कमजोरी में रहते हैं, हम उन ऐसी लोगों को यहाँ का ही जो वस्तु मिलता है तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उसको पूरा बना के, कभी सुरन के नाम से बनाते, कभी लड्डू बना के देते हैं जड़ी बूटी का। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे गांव गांव में जा करके इसका भी करते हैं, कुपोषित है सभी है, ये सभी दवा हम लोग उनको, माने दवा माने यहाँ हमारे जो हमारे आप में जो खेती करते हैं उसी में से हम लोग इसको बना के खा सकते हैं, तो कितना हम लोग का तंदुरुस्त होता है। हम लोग तो ये तो हमारा परंपरा है, आदिवासियों में तो जुड़ा हुआ रहता, प्रकृति से जुड़े हैं, इसका सब मालूम रहता है, सूजन आने से कैसे उसको करते हैं, उबाल के कैसे नहलाते हैं, सूजन कैसे उतरता है, गाँव होने से ये दवा लगाने से गाँव बढ़ता है, ये सारे जानकारी हम तो इंसान के गाय बैल से लेके सभी का सेवा करते हैं।
2: और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आपका योगदान देश और दुनिया जाने और सरकार की ये जो पहल है ये आपको किस तरह से लगती है?
3: हम लोग तो अभी तक की 1984 से आज तक ने जो काम किए हैं, जो हम चाहते हैं कि इस काम को गुप्त रूप से रहे, काम करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक काम होता है कि इसको छुपा नहीं सकते हैं, जन जन में पहुंचने वाला काम है, हर व्यक्ति का पुकार है, इस गांव से लेकर नगर से लेकर बड़े बड़े शहर से लेकर केंद्र तक का ये अपने आप ही होने वाला चीज है, तो आगे फोकस हो गया, आगे चला गया। और आज हम जैसे कि धूल में मिले हुए कंकर को परसमणि बनाने की कोशिश करने वाले सरकार है उनके हाथ में, और इसमें बड़ा समाज है, ये समाज का बल है, समाज का ऋणी है। आज तक हमने जो किए है कि हमने भी नहीं कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अवार्ड जो है कभी होगा, और सम्मानित करने का कभी मौका हमको भी मिले, ऐसा कभी हम लोग को पता भी नहीं था, लेकिन आज ही आप सभी के सहयोग है, हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला और पूरे बस्तर संभाग, हमेशा लोग सोचते थे कि लोग ही अबूझ है, आप जान रहे हैं, तो ऐसा क्षेत्र में भी आज ही उभर कर काम सामने आया, ये कार्य का प्रणाम है ये सब करने के लिए होता है। और ये सब आज जो पिछड़े समाज भी चाहता है कि हमारे बीच में कोई सम्मानित है, वो उनका सम्मानित है ये सब।
2: कार्यक्रम में शामिल होने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे मधुमति का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं अगला ये खूबसूरत गीत, लेकिन उससे पहले दो पंक्तियाँ। दुआओं में बस एक ही अरमान रहता है, दुआओं में बस एक ही अरमान रहता है, जिसे दिल चाहे वही मेहमान रहता है। मोहब्बत का रिश्ता उम्र का मोहताज नहीं होता, सच्चे प्यार में हर पल एक नया जहान रहता है।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
1: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी। मोबाइल नंबर 8477008200।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट

0: SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कुछ आंखें किताबों से ज्यादा बोलती हैं, कुछ नजरें बिना कहे दिल का हाल खोलती हैं। उनकी एक झलक ही काफी है महफिल सजाने को, क्योंकि कुछ आंखें हजारों अफसाने समेटे होती है।

मोहब्बत का एहसास बड़ा नाजुक होता है। दिल के रिश्तों का अपना ही जादू होता है। कभी चाहत में फासले भी ज़रूरी होते हैं ताकि हर मुलाकात का अपना एक सुकून होता है।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सेहत कार्यक्रम में थायराइड के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर अश्विनी शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम जानेंगे थायराइड लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी शर्मा को। डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आपसे जानना चाहेंगे थायराइड क्या होता है।
2: देखिये, थायराइड एक ग्रंथि होती है, एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि है जो की हमारे गले के पास में होती है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, जो मेटाबोलिज्म भी देखता है। तो थायराइड ग्रंथि हमारा T3 एंड T4 नाम के दो हार्मोन को बनाती है, जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं और वो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाते हैं।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, आजकल थायराइड के जो मरीज हैं वो तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं?
2: देखिए, थायराइड अगर हम सतही तौर पे जाएं स्टार्टिंग से, तो थायराइड दो टाइप का होता है। एक होता है हाइपोथायरायडिज्म, जिसमें हमारी थायराइड की ग्रंथि इधर उससे कम काम कर रही है, और एक हाइपरथायरायडिज्म। ठीक है, ये दोनों चीजें थायराइड ग्रंथि की एक कम प्रक्रिया से काम कर रहा है, एक ज्यादा काम कर रहा है। अभी आपका जैसे पूछा है कि आजकल ज्यादा क्यों है, देखिए जो हम हाइपोथायरायडिज्म जो कि हमें ज्यादातर अपने पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ये बेसिकली दो तीन कारण होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस, मतलब कि आपके बॉडी का इम्यून सेल्स जो है वो आपकी बॉडी के ही सेल्स को मार देते हैं या थायराइड की ग्रंथि को ही मारने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो थायराइड है वो जरूर से कम काम करने लगता है। इसके अलावा जो और दो चार कॉजेज हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन हो जाना, तो थायराइड ग्रंथि को काट दिया जाता है तो उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर आयोडीन की कमी। पर इन तीनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है ऑटोइम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस, और ये हमारी बॉडी के एक ऑटो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ऑन होने से होता है। आजकल हमारा जैसे रहन सहन है, खान पान है, तो उससे बहुत कॉमनली ये होता है कि हमारा ऑटो इम्यून इश्यू जो है वो पनप जाता है।

0: टूटने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स आपको हाइपरथायरायडिज्म में दिखते हैं, और इसी के विपरीत जो सिम्टम्स हैं वो आपको हाइपरथायरायडिज्म में दिखेंगे, जिसमें थायराइड की ग्रंथि जरूरत से ज्यादा काम कर रही है।
1: बात करें महिलाओं की, तो उनमें थायराइड की समस्या ज्यादा क्यों देखी जा रही है?
0: देखिए, इसका कहना तो बिल्कुल मतलब मुश्किल है कि महिलाओं में ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखा गया है जो स्टडीज में कि महिलाओं को थायराइड के जो इश्यूज हैं वो मतलब जेंडर बेस्ड वो उनको ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल बेस्ड, जो कि हमारा स्टडीज ने एविडेंस बेस्ड स्टडीज है उन्होंने इस चीज में बताया है।
1: जी जी डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, क्या तनाव या अनियमित जीवन शैली भी इसका एक कारण है?
0: ऑटोइम्यून इश्यू जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है एक्सेसिव स्ट्रेस से, या फिर हमारी जो अनियमित दिनचर्या जैसे कि देर रात तक जागना, खान पान में गड़बड़ी होना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कभी ना कभी किसी चीज में ऑटोइम्यून इश्यू को ट्रिगर ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइडाइटिस हो जाता है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो जाता
1: जी।
0: है।
1: कोई पेशेंट है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे थायराइड हो चुका है या संभावना है, तो कब जांच करवाए वो?
0: इसकी बहुत सरल जांच है, इसको हम कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें मुख्य तौर पर तीन पार्ट्स होते हैं, T3, T4 एंड TSH। T3 एंड T4 ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्रंथि खुद बनाती है, और TSH जो हार्मोन है वो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जो कि पिट्यूटरी से संदेश लेके आता है कि थायराइड को ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो वो उसको TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो जांच होता है वो खाली पेट होता है, और इसका जो एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस समय अगर ब्लड का सैंपल दिया जाए तो सही रिपोर्ट आने के ज्यादा संभावना है, सुबह 7 से 10 बजे के बीच में खाली पेट हमारा पेशेंट जांच दे देता है, तो सही रिपोर्ट आने के चांसेस काफी बेहतर होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड का उपचार क्या है?
0: देखिए, थायराइड का जो मैंने बताया, अगर हाइपोथायराइडिज्म है और आयोडीन की डिफिशियंसी से है, जिसको एंडेमिक गॉइटर भी कहते हैं, तो उसमें तो हम आयोडीन सप्लीमेंट देते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जैसे अभी मैंने हाशिमोटो थायराइडाइटिस बताया है कि ऑटोइम्यून इश्यू की वजह से होता है, इसका अभी तक जड़ से तो कोई इलाज नहीं है, पर इसके लिए हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अपने पेशेंट्स को देते हैं, लॉन्ग टर्म देते हैं, जिसमें उनको थायरोक्सिन सोडियम या लिवर थायरोक्सिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, जिनको वो रोज सेवन करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट करते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो चलेगी, ये जीवन भर चलेगी क्या?
0: देखिए, मुख्य तौर पर ये जीवन भर ही चलती है, अगर किसी कारण से जो ऑटोइम्यून इश्यू है वो क्षीण हो जाता है या बहुत कम लेवल पे आ जाता है, तब हमारे जो हार्मोन लेवल्स हैं वो मेंटेन हो जाते हैं, तो हम कहीं हद तक गोलियों को कम कर सकते हैं, या कभी कभी हम उनको गोलियों को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से टाइटर कर देते हैं। जैसे कई पेशेंट्स हैं जिनको हफ्ते में एक बार गोली देनी पड़ती है, और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको रोज गोली भी खानी पड़ती है।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, क्या थायराइड के जो मरीज हैं उन्हें खाने पीने कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, ध्यान देना चाहिए। एक तत्व होता है गोइट्रोजेंस, आमतौर पर देखा गया है, जो हमें लिटरेचर भी बताता है, कि एक फैमिली होती है वेजिटेबल्स की जिसको क्रूसीफेरस फैमिली कहते हैं,
1: जी,
0: जिसमें ज्यादातर फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, शलगम, सोयाबीन, ये सारी चीजें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको थायराइड का इश्यू है। और अगर बहुत ही मन है कि आपको खाना ही है और आपका पसंदीदा व्यंजन है, तो जब भी ये चीजों का सेवन करें तो उनको अच्छे से पका के खाइए।
1: कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका प्रयोग करें तो थायराइड से बचाव बना रहे?
0: ऐसा अभी तक तो ज्ञात नहीं है कि इनका प्रयोग से बचाव किया जाए।
1: डॉक्टर साहब, जो महिलाएं जो गर्भावस्था में होती हैं, उनको अगर थायराइड हो जाता है तो कितना गंभीर है ये शिशु के लिए?
0: देखिए, ये बहुत ही गंभीर इशू है शिशु के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। जब कोई भी औरत गर्भावस्था में होती है तो उसका मेटाबॉलिक डिमांड जो होता है वो सामान्य आदमी से ज्यादा होता है।
1: जी,
0: तो अगर उसका थायराइड का इश्यू उनको पहले से है या उस दौरान पनपा है, और अगर थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है या ज्यादा काम कर रही है, तो उसका जो शिशु का डेवलपमेंट है, जो वूम के अंदर डेवलपमेंट है, उस पर असर पड़ता है, जिसपे बहुत सारी कंजेनाइटल एनोमलीज, जो गर्भावस्था के दौरान जो शिशु को दिक्कतें हो सकती हैं।
1: आगे क्या शिशु के मानसिक विकास में या शारीरिक विकास में कोई फर्क पड़ेगा?
0: जी बिल्कुल, अगर थायराइड को मेंटेन नहीं किया तो शारीरिक और मानसिक विकास में फर्क पड़ने के पूरी संभावना है।
1: डॉक्टर साहब, क्या थायराइड से जुड़ी हुई कुछ गलत फहमियां भी हैं जो मरीज हैं उनमें प्रचलित हों?
0: थायराइड से जुड़ी प्रचलन ये है कि लोगों को लगता है कि हम जब थायराइड का टेस्ट कराते हैं कि TSH का टेस्ट करा लिया और वो बढ़ावा आया तो लोगों को ये लगता है कि भाई हमें थायराइड हो गया और वो गोली का सेवन करने लगते हैं, या जो ब्लड रिपोर्ट उनके पास आती है वो देखते हैं कि सारे पैरामीटर्स बॉर्डर के अंडर हैं तो हमें

0: ब्लड के इश्यू नहीं है, या हमने गोली खा रहे हैं, रिपोर्ट करा लेते हैं और फिर देखते हैं कि रिपोर्ट एकदम सही आई तो गोली छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गोली का सेवन करना और गोली को छोड़ना आपको अपने चिकित्सीय सलाह के साथ ही करना चाहिए। अपने आप से कभी भी गोली को स्टार्ट करना या उसका सेवन बंद कर देना अपने आप से बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: गोली कब खानी चाहिए?
0: गोली हमेशा अपने चिकित्सीय सलाह के साथ लेनी चाहिए, और सबसे बेस्ट टाइम गोली खाने का है वो होता है सुबह उठते ही खाली पेट, क्योंकि अगर आप जब भी गोली खाएं उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ खाना नहीं होता है। अगर ऐसा किया तो कहीं ना कहीं जो गोली का असर है वो काफी कम हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाता है। इसलिए बेस्ट टाइम हम कहते हैं जैसे ही आप सुबह उठें आप सबसे पहले गोली का सेवन कर लीजिए, उसके 1 घंटे पश्चात ही कोई टी कॉफी चाय वगैरह या कुछ भी नाश्ता है उसके 1 घंटे पश्चात ही करें।
1: डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज है वो गोली खाना भूल जाए तब क्या करे?
0: वो अगर गोली खाना भूल जाए 1 दिन की गोली से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो नेक्स्ट डे अपना सेम रूटीन फॉलो कर सकते हैं।
1: 2-3 दिन भूल जाए तो क्या फिर ज्यादा डोज लेना सही है?
0: देखिए, एक गोली का जो असर होता है वो करीबन 5 से 7 दिन तक का होता है। अगर 1-2 दिन अगर वो भूल जाए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो कितने पावर की गोली खा रहे हैं। अगर उनका काफी डिरेंज्ड है तो उनको उसी अकॉर्डिंगली अपने चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए, तो उस हिसाब से उनके जो डॉक्टर हैं वो उनको सलाह दे सकते हैं।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के थायराइड या अन्य बीमारियों के नुस्खे बताए जाते हैं। थायराइड के लेकर ये नुस्खे जो बताए गए हैं उनको बिना चिकित्सकीय सलाह के प्रयोग में लाना कितना घातक हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए आजकल जैसे हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, पर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके सिर्फ जो सर्टिफाइड लोग हैं, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, आपके अपने घरेलू चिकित्सक जो हैं, जो आपके आसपास हैं, आप जिनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हीं के सलाह को आप मानिए और उन्हीं के सलाह से आप कोई भी थायराइड की गोली या इनका सेवन करें। कोई भी बिना जो सोर्स है उसको बिना जांचे आप उस इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें।
1: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर झाड़ फूंक और तमाम इस तरह की अन्य चीज़ों का भी प्रचलन है, ये कितनी कारगर हो सकती हैं थायराइड में?
0: जी, ये बिल्कुल कारगर नहीं है, और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पे बिलीव ना करें, सिर्फ सर्टिफाइड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे ही भरोसा करें और चिकित्सीय सलाह पे ही दवाई को सेवन करें।
1: यदि कोई व्यक्ति थायराइड से ग्रसित है तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए?
0: सबसे पहली बात है कि आपको अपनी दवाई को नियमित रूप से लेना है, और कभी भी बहुत ज्यादा ओवर एग्जर्शन नहीं करना है, और तनाव मुक्त रहना है। हाफ एन आवर की वॉक पूरे दिन भर में रखनी है और 10 बजे तक सो जाना चाहिए।
1: आप तनाव मुक्त जीवन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आज के समय जो व्यक्तियों का जीवन है वो तो तनाव से पूरी तरह भरा हुआ है, चारों तरफ तनाव ही है।
0: जी देखिए, मैं जब तनाव की बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैं चिंता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चिंतन की बात कर रहा हूं। जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं, छोटी छोटी बातों को मन में चलाते रहते हैं, हर बात में छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं, तो उस चीज को हम काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। हम चिंता को अगर कम नहीं कर सकते पर हम चिंतन को कम कर सकते हैं। तो इस बारे में हम अगर मेडिटेशन की हेल्प लें या हमारी कुछ हॉबीज होती हैं, जब हम हॉबीज कर रहे हैं और हम उसमें सब चीज दिन दुनियादारी भूल जाते हैं, सिर्फ अपने हॉबीज में फॉलो रखते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी दिनचर्या अपनी शैली में ला सकते हैं और अपने माइंड को फोकस रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं अक्सर सुनने में आता है जो वैद्य लोग हैं उनके नुस्खों को लेकर कहा जाता है ये थायराइड क्या अन्य बीमारियों की रामबाण दवा दे देंगे, थायराइड 2-3 डोज में खत्म हो जाएगी, कितना सच है?
0: इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और मैं अपने श्रोताओं को ये कहूंगा कि ऐसी किसी भी बातों पे भरोसा ना करें, अपने चिकित्सीय सलाह के साथ ही आप गोली का सेवन या गोली का निदान करें।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कोई 3 नुस्खे आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें जो थायराइड से ग्रसित हैं?
0: सबसे पहली बात है अपनी जीवन शैली को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं और प्रकृति के अनुसार चलें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। 10 बजे से पहले आप सो जाइए, 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, 6 बजे उठिए, 10 मिनट सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाइए, जिससे कि आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम है, वो सन से अलाइन हो जाएगी, तो आपके हार्मोनल बैलेंस ठीक रहेगा। दूसरा, आधे घंटे की वॉक जरूर कीजिए, और तीसरा, ओवर थिंकिंग जो चिंतन की मैं बात कर रहा हूँ उसको अवॉइड कीजिएगा, किसी हद तक आपका जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी में वो मेंटेन रहेगा।
1: प्राणायाम की भी कुछ भूमिका हो सकती
0: जी
1: है?
0: बिल्कुल, आप अपनी बॉडी में जितना अच्छे से इसका व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप सूर्य नमस्कार करेंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभप्रद हैं।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं को थायराइड लक्षण कारण व उपचार विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे थायराइड के कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर अश्विनी शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको अब बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकेंगे सुबह 11:25 पर, दोपहर 12:10 पर पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत। आज आप सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित श्री SKM मैलानंदन से बातचीत। दोपहर 12:20 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा दिवाकर गांगुली के स्वर में भजन। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम घर गृहस्थी आप सुनेंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा उषा कोटनाला के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। समय रहेगा सुबह 10:45 पर। दोपहर 2:30 पर सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुनेंगे। पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी में दोपहर 3:10 पर आप सुनिएगा पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर पुनिया मूर्ति नतेसन से बातचीत, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:00 को हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
3: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अवधारणा के माध्यम से स्थानीय संस्कृति और स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत नई दिल्ली में आज से हो रही ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। अब तक 12,94,700 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, ताराकुंड में पर्यटन विकास के लिए नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1-12 के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी किए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उत्तराखंड में कोस्ट गार्ड नेवी एयरफोर्स आदि के लिए अधिक से अधिक भर्ती रैलियां आयोजित का अनुरोध किया। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई, 30 जून से यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनजर 30 जून से गंगा में रिवर राफ्टिंग का संचालन बंद होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया। नैनीताल में आयोजित 100वीं अखिल भारतीय ट्रेड्स कप हॉकी प्रतियोगिता की लीग मुकाबलों में दिल्ली की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता है। अभी आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:02 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम था हम आपके दिल में रहते हैं। फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने और शब्द रचना थी समीर की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन, आवाज़ है लता मंगेशकर की और फिल्म में संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और शब्द रचना है देव कोहली की।

उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म डर से, और इस फिल्म में संगीत दिया था शिव हरी ने और शब्द रचना

अभी आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये खूबसूरत गीत उदित नारायण की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत बादशाहों से तुलसी कुमार की आवाज़ में।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं पीपल्स पद्मावान आकाशवाणी में डॉक्टर चंद्रमौली गद्दा मानुगु से बातचीत, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में उषा कोटनाला के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं अमित धीमान और बांसुरी पर आपका साथ दे रहे हैं कैलाश चंद ध्यानी।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
4: धामी सरकार की पहल पर पहली बार उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में उषा कोटनाला के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं अमित धीमान और बांसुरी पर आपका साथ दे रहे हैं कैलाश चंद ध्यानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के अंतर्गत उषा कोटनाला के गाए हुए रोहिलखंडी लोकगीत। इसी के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत रविलाल टुडू से बातचीत।

0: वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते।
1: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
2: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूब ही आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
1: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
2: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बाद भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
1: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
2: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था या अठवा सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ संताली भाषा अष्टम तपस्वी में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी। ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके सक्सेसफुल ये मिला है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
2: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा। लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
1: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
2: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा। लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा संताली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहां जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है, आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अप अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था। ये लड़का तो वो अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हमसे क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है, किताब में हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर, जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर का पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है, कैसा ही है, तो बोलता ना है बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एक इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
2: प्राइमरी गांव में ही है, नुआड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके हम कलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
2: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में, अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम। 4 साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ 3-4 नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है, ये के लिए हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर किया है, लास्ट में रिटायर किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
2: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
2: अभी तो रिटायर कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक का साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी का साथ तालमेल के हम काम करके जाएगा, जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा, कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, इतना संभव होगा मालूम नहीं।
1: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
2: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुआ है, बहुत सारे निग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लिख के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसे भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटेलिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। और आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
2: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सज्जनदा, तो ही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य अकादमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टुडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
2: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलता है, यही अच्छा वाला बात है। हम तो

0: ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, ये अच्छा होता है।
1: टूडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टूडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.earnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

FM 7.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद के इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है विधाता फिल्म से। सुनना चाहा है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, बसंतराव भोजने, PS नहावकर और तुषार करांगले। साथ ही श्रोता हैं मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अतौर रहमान, शेख हबीब उर रहमान, और गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रतेश और पूरा संघई परिवार। सेक्टर 18 जगधारी यमुनानगर हरियाणा से हैं विजय मोहन खार 1, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत विधाता फिल्म से।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
0: ओ
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: FM 105 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जूली फिल्म से। सुनना चाहा है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद ने। घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना और गुड्डी भगत। साथ ही हमारे श्रोता हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया। अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं हमारे श्रोता हैं यूनिवर्सिटी कैंपस हनोई वियतनाम से प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर स्वर्णलता युगेन और डॉक्टर धम्बाला। साथ ही मैसेज किया है परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करण वीर, करण दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत ने। करण वीर हाउस भुजो केंचिया बटिंडा पंजाब से। साथ ही मैसेज हमें मिला है श्रोताओं का, आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा और शर्मा और हर्ष आहूजा। ये हमारे मैसेज लिख रहे हैं आप श्रोता हैं संदीप कुमार, दिव्या, अनुदेव और आप हैं गांव रमशाया वाला, जिला सहारनपुर UP से। भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, अयात और सिकंदर अली। कस्बा चिलकाना से हैं मोहम्मद जारिफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर और दानिश राजा, मुन्ना नाजिम अंसारी। गांव झगड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़ गुरमेजो, गौरव परवीन, युगम वीरेन, मनकीरत और मनराज। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और GS राम गढ़िया। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायब लड्डू। अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत। और आप श्रोता हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बासवानी। आइए श्रोताओं सुनते हैं जूली फिल्म का ये गाना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं की फरमाइश हम ले रहे हैं हमारे श्रोताओं की, नाम शामिल कर रहे हैं। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और सुहानुभूति चक्रधर। साथ ही हमें मैसेज मिला है धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र के श्रोताओं का, आप श्री कृष्ण बांठे, संदीप और अमूल्य बांठे। ये श्रोता हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से, और पिहरा बाजार झूड़ी तलैया से हैं अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनुरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जय प्रकाश साव, बसंत लाल साव, हीरा मोती और पन्ना लाल साव। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा नरवाड़े और अक्ष कुमार। राजनगर कांति निकेतन से हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र, संगीत गुप्ता, संगीता गुप्ता, मौसम और ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, शारदा गुप्ता, कुसुम और रूपा इलाहाबादी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार। अगला मैसेज हमें मिला है गोविंदपुरा सीकर के श्रोताओं का, आप हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। वैष्णव कॉलोनी सनावत के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासिम और हाजी अयूब शेरी। मल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीव्यम जैन। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। गांव कैरो, जिला तरनतारन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप अनहद और गुरशब्द। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत फिल्म हिना से।

श्रोताओं, हिना फिल्म के इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। सुनना चाहा है रॉबर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया ने। साथ ही हमें मैसेज मिला है इंदिरा विहार कॉलोनी से, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी और उमर खेड़।

श्रोताओं, हिना फिल्म के इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। सुनना चाहा है रबर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया ने। साथ ही हमें मैसेज मिला है इंदिरा विहार कॉलोनी से, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी और उमर खेड़।

पवन पाटिल, बाबा कुटी रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान और डुग्गू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। और ये मैसेज हमें लिख रहे हैं श्रोता हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष चंदन और पांडु कुंभार। देवरी भाटापारा से के.आर. साहू, आकाश, कमलेश, गनुलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। और अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। और आप श्रोता हैं चंडीगढ़ से सतीश और विमला अनेजा,

श्रोताओं, अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। ये मैसेज हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आराध्या। साथ ही मैसेज कर रहे हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सातिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश और रमेश।

और ये श्रोता हमारे हैं गांव उगाला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन और इनके परिवार के सदस्य। साथ ही लिख रहे हैं कस्बा मुंडिया नवी बक्स से मास्टर फारूक अहमद तफसील अहमद मोहम्मद हारून मोहम्मद युवनुस और रबीब। अगला मैसेज हमें लिखा है श्रोता है शिवाजी नगर बड़ाली देशमुख से राजेश खोबर खेड़े शिवसागर इंद्राबाई और छकुलिताई खोबर खेड़े खाड़वी बुलढाणा से दीपाली राम धाड़े स्वराज राम थिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे अंबागढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। साथ ही ये मैसेज हमें मिला है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण श्रीवास्तव अंजू दिवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल का। अगला मैसेज मिला है श्रोता लिख रहे हैं तेलंगाना छोटूपल से कस्तूरी रामेंदु और भूमा देवी। ये श्रोता हैं जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी अयान और जीशान मंसूरी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला ये गीत जिसे हमने लिया है जंजीर फिल्म से।

0: श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा था पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। साथ ही हमें मैसेज मिला, आप श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। और अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं, ये श्रोता हैं हमारे, ये हमारे श्रोता हैं, नाम इनका कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, मजनू कटीला से, सतना से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में

54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे दिवाकर गांगुली के गाए कुछ भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिवाकर गांगुली के गाए भजन कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम घर गृहस्थी।

नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम घर गृहस्थी में। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शिप्रा। आशा करते हैं बहनों, आप स्वस्थ, प्रसन्न और अपने परिवार के साथ सुखद समय बिता रही होंगी। बहनों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते स्वयं की देखभाल करना भूल जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य, खान पान और आराम का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने परिवार का रखती हैं, क्योंकि जब आप स्वस्थ और खुश होंगी तभी आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। बहनों, समय तेजी से बदल रहा है और आज की महिला केवल घर परिवार की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही बल्कि अपने सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मजबूती नहीं देती बल्कि यह आत्मविश्वास, सम्मान और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी सोच के साथ आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। हमारा आज का विषय है स्वरोजगार हेतु कौशल विकास। बहनों, हर महिला में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा और हुनर जरूर होता है। किसी को स्वादिष्ट व्यंजन बनाना पसंद है, कोई सिलाई कढ़ाई में निपुण है, कोई ब्यूटी और मेकअप का अच्छा ज्ञान रखती है तो कोई हस्तशिल्प या सजावटी वस्तुएं बनाने में माहिर होती है। कई बार हमें लगता है कि ये केवल शौक हैं, लेकिन सही प्रशिक्षण और थोड़े से प्रयास से ये शौक आय का अच्छा साधन बन सकते हैं। कौशल विकास का अर्थ है अपने हुनर को और बेहतर बनाना, नई तकनीकों को सीखना और अपने काम को पेशेवर तरीके से करने की क्षमता विकसित करना। आज सरकार और विभिन्न संस्थान द्वारा महिलाओं के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें सिलाई, ब्यूटी कल्चर, कंप्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सोचिए बहनों, यदि आप घर पर स्वादिष्ट आचार, पापड़, मसाले या बेकरी उत्पाद बनाती हों तो उन्हें अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाकर या ऑनलाइन माध्यम से बेचकर अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। यदि आप सिलाई जानती हैं तो घर पर ही बुटीक या सिलाई केंद्र शुरू कर सकती हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छोटे व्यवसायों के लिए भी बड़े अवसर खोल दिए हैं। बहनों, स्वरोजगार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप अपनी सुविधा अनुसार समय का प्रबंधन कर सकती हैं। इससे घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकती हैं। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे परिवार की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। याद रखिए, सफलता की शुरुआत बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से होती है। यदि आप आज कोई नया कौशल सीखने का निर्णय लेती हैं तो यह निर्णय आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। तो बहनों, अपने भीतर छुपे हुनर को पहचानिए, उसे निखारिए और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में अपने महत्वपूर्ण योगदान को दीजिए। इसी के साथ आइए अब आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है वार्ता का, जिसमें डॉक्टर मंजू कोग्याल से जिसमें डॉक्टर मंजू कोग्याल बात कर रही हैं समाज में फैली रूढ़िवादिता के बारे में। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
6: भारतीय समाज का ढांचा रूढ़ियों पर आधारित है। आज हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं, कहने को तो हम और हमारा समाज अत्याधुनिक और विकसित माना जाने लगा है, किंतु सच कहें तो आज भी हमारा समाज अंधविश्वास और रूढ़ियों की कुंद मान्यताओं का बोझ उठाए हुए है। एक ओर मनुष्य ने सागर से आकाश तक की दूरी तय कर ली है, चांद और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को तलाश लिया है, वहीं दूसरी ओर आज भी घर गांव में बिल्ली के रास्ता काटने को अपशकुन मानते हैं। भारत विविधता का देश है, जहां दर्जनों धर्म तथा मजहब के लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, किंतु इन सभी में एक समानता मिलती है, वह है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की। अंधविश्वास और रूढ़ियां समाज के लिए एक विष के समान हैं, जो उसकी जीवंतता को नष्ट कर देता है, क्योंकि अंधविश्वास वह तर्कहीन और अवैज्ञानिक मान्यता है जो कालांतर में आस्था का स्वरूप ले लेती हैं। रूढ़िवादिता एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज़ के बारे में पुराने समय से चली आ रही मान्यताओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती हैं तथा उसी को स्वीकार करती हैं। रूढ़िवादिता की एक विशेषता है कि वह परिवर्तन स्वीकार नहीं करती, पूर्व से बनी परंपराओं पर ही उसकी आस्था बनी रहती हैं। किसी भी समाज की जो लोक रीतियां होती हैं, इन्हीं से रूढ़ियों का जन्म होता है और ये रूढ़ियां परंपराओं पर आधारित होती हैं। परंपराओं का अर्थ व्यक्तियों की उन सभी आदतों, विचारों, प्रथाओं, नियमों, कहानियों तथा किंवदंतियों से हैं जो पहली पीढ़ी मौखिक रूप से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं। प्राचीन काल में भारत को जादू टोनों का देश माना जाता था। हजारों वर्षों से भारतीय समाज में रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को प्राशय प्राप्त हुआ है। इन घटकों ने जिसे सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है भारतीय ग्रामीण अंचल। इसके साथ ही भारतीय आदिवासी समाज जीवन में भी अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ व्यापक रूप में देखने को मिलती हैं। ग्रामीण समाज में इन रूढ़ियों के कारण अनेक विकृतियाँ आई हैं। ये रूढ़ियाँ जातिगत हो सकती हैं, धर्मगत हो सकती हैं, लिंगगत हो सकती हैं या क्षेत्रगत भी हो सकती हैं। कुछ अंधविश्वास तो इतने जटिल तथा घातक हैं जो कि मानव अस्तित्व के लिए संकट का स्वरूप धारण करती जा रही हैं। इसी प्रकार के अंधविश्वास आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं कि यदि किसी महिला को मासिक धर्म हुआ हो तो उसे रसोई घर, मंदिर, यहाँ तक कि 7 दिनों तक घर से बाहर न निकलने देना तथा अलग बर्तनों का इस्तेमाल करना इन्हीं रूढ़ियों व अंधविश्वासों को यथार्थ रूप में चित्रित करता है। समाज में फैली इन विसंगतियों का संपूर्ण लेखा जोखा भारतीय साहित्य एवं लोक साहित्यों में संचित है। यही कारण है कि साहित्य

नृत्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षतः जो भी घटित होता है, साहित्यकार भी उन घटनाओं, परिस्थितियों, रूढ़ियों तथा मान्यताओं से प्रभावित होता है, क्योंकि वह भी समाज का एक अभिन्न अंग होता है। हिंदी के इतिहासकार तथा आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन इसी अभिन्नता को व्याख्यायित करता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदिकाल से ही भारतीय साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें अनेक संत महात्मा, कवि एवं समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त इन अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को उद्घाटित कर अपनी ओजस्वी लेखनी के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया है। भारतीय समाज में जाति प्रथा एक कोड़ के समान सदा से ही समाज को संक्रमित किए हुए हैं। इसी पर कुठाराघात करते हुए संत कबीर कहते हैं कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसी प्रकार धर्म के नाम पर भी हमारे समाज में अनेकों अंधविश्वास और रूढ़ियां प्रचलित हैं, जिनके चलते व्यक्ति को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अंधश्रद्धा व सामाजिक रूढ़ियों के भय से वह उन रूढ़ियों व मान्यताओं को मानने के लिए विवश हो जाता है। साहित्यकार हिमांशु जोशी की कहानी तर्पण इसी विवशता को यथार्थ रूप में चित्रित करती हैं। कहानी में कहानी की नायिका मधुली के माध्यम से जोशी जी ने हमारे समाज में एक विधवा स्त्री के कष्टों को व्यापक रूप से चित्रित किया है, जिसमें मधुली का पति तुलसा सरकारी सुरंग में पत्थर तोड़ने का काम करता है। इसी दौरान वह चट्टान से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक उसकी मृत आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं 11 ब्राह्मणों को भोज कराने की चाह में वह दर दर भटकती हैं और गोदान करने के लिए उसे विवश किया जाता है। आर्थिक धनाभाव के कारण अंत में वह थक हार कर कोसी नदी के तट पर जाकर बालू की गाय व पिंड बनाकर अपने पति को तर्पण देती हैं। यह कहानी न केवल मधुली की है, वरन संपूर्ण भारतीय समाज जीवन का प्रतिनिधित्व करती है कि किस प्रकार आज के वैज्ञानिक युग में भारत की अधिकांश जनता अपने परंपरागत विश्वासों और रूढ़ियों के बंधन को स्वीकार करती हुई प्रगति के विपरीत मार्ग पर चल रही है। धर्म और संस्कृति का वास्तविक स्वरूप लुप्त होता जा रहा है और इस संदर्भ में संकीर्ण विचारधाराओं में वृद्धि होने लगी है। भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य में भी इस तरह के अंधविश्वास व रूढ़ियाँ हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। 16वीं शताब्दी में अंधविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है शेक्सपियर की रचना मैकबेथ। मैकबेथ में भी शेक्सपियर ने 3 चुड़ैलों के माध्यम से अंधविश्वास की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है, जिसमें वह मैकबेथ को भविष्यवाणी करती है कि आप थैन ऑफ कडोर बनोगे। उसके पश्चात शीघ्र ही वहां राजा के संदेशवाहक आकर उसे इसी उपाधि से संबोधित करते हैं, जिससे अंधविश्वास के ऊपर मैकबेथ का विश्वास मजबूत हो जाता है और राजा बनने की चाह में मैकबेथ स्कॉटलैंड के राजा डंकन की हत्या कर देता है। इसी तरह से धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पर्याप्त वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु के कथा साहित्य में भी मिलता है, जिसमें मलेरिया और कालाजार से त्रस्त इस गांव के लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि गांव में अस्पताल खुलना, मलेरिया सेंटर का खुलना

0: के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्व के सर्वाधिक समृद्ध और विकसित देश अमेरिका में आज भी 44% लोग भूत और 3% लोग चुड़ैलों में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की 75% आबादी आज भी स्वयं को अंधविश्वासी बताती हैं। इंग्लैंड की यह अंधविश्वासी जनता घर के दरवाजे के पास छतरी खोलने, नए जूते मेज पर रखना जैसे कृत्यों को अशुभ मानती हैं। हमारे देश का स्वरूप यहाँ की सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों के परिणाम स्वरूप बहुत ही अधिक दुखद और क्रूर बन गया है। आज भारतीय जीवन विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से संकटग्रस्त हो चुका है। आज भी भारतीय जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक अव्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषा बोलीवाद, दहेज प्रथा आदि रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ फैल चुकी हैं। इसने हमारे सामाजिक जीवन को खोखला कर दिया है। भारत के साथ ही पाश्चात्य देशों में 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में व्याप्त अंधविश्वास, जिसका प्रतिबिंब शेक्सपियर के मैकबेथ में मिलता है, से लेकर COVID-19 टीकाकरण से संबंधित तमाम भ्रांतियाँ हो, ये सभी तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भले ही आज का मानव भौतिक रूप से साधन संपन्न हो, फिर भी उसमें वैज्ञानिक तार्किक सोच एवं मानवीय गुणों का अभाव है। अतः आवश्यक है कि हम इन अंधविश्वास एवं कुरीतियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उन कल्याणकारी अधिगम के अनुरूप करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सही अर्थों में शिक्षित, विकसित और समृद्ध हो पाएं।
1: तो अभी हमने सुनी वार्ता, आइए अब लेते हैं एक संगीतमय विराम, फिर जारी रखेंगे अपनी बातों का सिलसिला, पर उससे पहले सुन लेते हैं कुछ सूचनाएं।
2: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
3: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
2: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
3: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षक किफायती फीस पर।
2: और परिणाम?
3: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
2: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

बहनों, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर और टैबलेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, कामकाज, मनोरंजन और आपसी संवाद के लिए इन उपकरणों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनके बढ़ते उपयोग के साथ एक गंभीर समस्या भी सामने आ रही है। वो है बढ़ता स्क्रीन टाइम। आज बच्चे हों, युवा हों या बुज़ुर्ग, सभी दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताने लगे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन का उपयोग करना कई लोगों की आदत बन गई है। इसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना और आंखों की थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा लगातार बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने से गर्दन, कंधों और पीठ में दर्द की शिकायत भी बढ़ रही है। बच्चों में शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से तनाव, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से कई बार लोग स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। अधिक समय तक मोबाइल और वीडियो गेम में व्यस्त रहने से उनकी पढ़ाई, रचनात्मकता और सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के स्क्रीन उपयोग पर उचित ध्यान देना चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्क्रीन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें, बीच बीच में आँखों और शरीर को आराम दें, नियमित व्यायाम करें तथा परिवार के साथ साथ समय बिताने और पुस्तक पढ़ने जैसी अच्छी आदतों को बढ़ावा दें। सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल और अन्य स्क्रीन उपकरणों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग ही हमें स्वस्थ और खुशहाल बनाए रख सकता है। इसलिए आइए हम सभी स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। और इसी के साथ बहनों, अब वक्त भी हो रहा है हमारा आप सभी से विदा लेने का। पर जाने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, जो बताने के लिए आप हमें पत्र भेज सकती हैं। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून 248001। और श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि क्या आप अपनी पसंद के लोकगीत या रागनी रेडियो पर सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए है एक सुनहरा अवसर। हेलो लोकमंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 26 जून को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। आप अपनी पसंद के लोकगीत और रागनियों की फरमाइश करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर है 7088001382। तो अब मुझे यानी शिप्रा को आज्ञा दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। सॉरी, माफ कीजिए।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम घर गृहस्थी, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। STF के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री B32 के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की, कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एंचोली और निराड़ा में एसटीबी प्लांट का निरीक्षण किया, सुरक्षा मानकों में तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में बहुउद्देश्य विधिक शिविर का आयोजन, आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी और रोजगार परक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
3: हरिद्वार जनपद के ग्राम्य विकास विभाग के लगभग सभी कंपोनेंट है, उनकी समीक्षा की गई और जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आए हैं उनको देख करके मैं काफी उत्साहित हूँ। अपवाद स्वरूप अगर एक हाथ लोगों को जोड़ दिया जाए तो सभी में बहुत रिमार्केबल काम जो है वो इस जनपद में हुआ है।
2: टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों को चिन्हित कर 100% स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। निक्षय पोर्टल पर अब तक लाखों संवेदनशील लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देहरादून में हर साल 3,500 से 4,000 टीबी के सक्रिय मामले सामने आते हैं, इसलिए बीमारी की समय पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 नई एक्सरे मशीनों की मांग भी की है ताकि स्क्रीनिंग की रफ्तार और बढ़ाई जा सके और टीबी के मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सके।
4: हमारी एक्सरे मशीन है, अलग अलग फैसिलिटी में है तो वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे एक टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है इसमें, तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं, उसको स्क्रीन करें। उस संबंध में लगातार एमओएसयू को निर्देश दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इंडोर मरीज हैं या जो भी वल्नरेबल ग्रुप के हैं उनका स्क्रीनिंग जो करें, तो वो उसको बढ़ाया जा रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हम वृद्धि करेंगे और अच्छे रिजल्ट इसमें अब आएंगे। देहरादून में क्योंकि अब ऐसा महानगर है तो यहाँ निश्चित रूप से केसेस ज्यादा रहते हैं, तो एक समय पर अगर हम बात करें तो 3,500 से 4,000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस जो है वो रहते हैं।
2: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मालसी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभियान की प्रक्रिया, उद्देश्य और महत्व की जानकारी देते हुए मतदाता सूची को त्रुटि रहित व अद्यतन बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने अपने बूथ क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच बनाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण, संशोधन और सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग करें। बैठक में कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे घर घर संपर्क कर नागरिकों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक करें ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए। प्रदेश में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है और कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासु स्थित गुरुद्वारा साहिब में गत 20 जून को हुई घटना के संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ माध्यमों से यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें तथा केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। वहीं पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं और यात्रियों का गुरुद्वारे में आवागमन सामान्य रूप से जारी है। लंगर, अरदास और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: पिथौरागढ़ जिले में सीवरेज व अपशिष्ट जल शोधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एंचोली और निराड़ा में एसटीपी प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्राथमिक उपचार इकाइयों से लेकर एरेशन टैंक तक पूरी शोधन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा मानकों में कुछ कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाया जाए ताकि अधिकतम घरों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य के लिए एसटीपी का बेहतर संचालन बहुत जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एसटीपी प्लांटों के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हो सके। बागेश्वर में आयोजित बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता, चिकित्सा व जन जागरूकता शिविर में विभिन्न विभागों ने एक ही छत के नीचे आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया। शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक महरा ने किया। शिविर में जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की व्यापक सहभागिता रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त जांच और दवा वितरण की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए।
6: इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आम जनता है, जो ऐसे लोग हैं जिन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, एक जगह पे उनको जो समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन से रिलेटेड हैं, मानसिक प्रमाण पत्र से संबंधित हैं, उनका निराकरण यहाँ मौके पर ही हो। काफी लोग ऐसे हैं जिनके मानसिक प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं क्योंकि यहाँ साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा निवेदन था चिकित्सा अधिकारी महोदय से कि वो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की टीम उपलब्ध कराएं ताकि मानसिक रोगों से संबंधित लोगों के प्रमाण पत्र बन सके। पेंशन से संबंधित कोई समस्या है, आधार से संबंधित जो समस्या है, उनका निराकरण यहाँ मौके पर ही हो पाए, तो मुझे उम्मीद है कि इस शिविर से जो यहां की जनता है उनको लाभ पहुंचेगा।
2: वहीं लाभार्थी रमेश पाठक ने कहा कि इस तरह के शिविर बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं।
7: ये बहुउद्देशीय शिविर जो लगा है बहुत अच्छा शिविर लगा है, लोगों को इससे लाभ मिलता है, बहुत काफी जानकारी मिलती है और यहाँ के विभिन्न प्रकार के दिव्यांग और किसी के आय प्रमाण पत्र जो बेचारे जिनको जानकारी नहीं है वहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाती है और बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के, उससे संबंधित सारी चीज की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। और ऐसे शिविर लगाने के लिए विधिक का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे लगने चाहिए ऐसे शिविर। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है, जानकारी का अभाव रहता है, तो यहाँ पर एक छत के नीचे सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है।
2: मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की, कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एंचोली और निराड़ा में एसटीबी प्लांट का निरीक्षण किया, सुरक्षा मानकों में तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में बहुउद्देश्य विधिक शिविर का आयोजन। आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आपकी कसम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। अब आपको सुनवाते हैं बेताब फिल्म का गाना

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बेताब फिल्में शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत आनंद बख्शी का लिखा था, संगीत था राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कहीं और चल से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और संगीतबद्ध किया है शंकर जय किशन ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242।
2: हाँ।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, वक्त हो चला है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने

0: उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
1: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
0: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
5: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National

0: earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. State energy giant Qatar Energy confirmed the incident, saying operations were underway to restart parts of the export terminal when the explosion took place. Officials have not yet confirmed whether the blast was accidental or linked to external factors. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in, Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom in a statement outside 10 Downing Street. He said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register the second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते

देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते

बुधवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल

0: की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है।

0: विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारत माँ के वीर सपूत जिनका कि आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 22 जून 1980 को जम्मू और कश्मीर के कठुआ के पास गोविंदसर गांव में एक सैन्य परिवार में जन्म हुआ था कैप्टन सुनील कुमार चौधरी का। आज हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

सैनिक साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन सुनील कुमार चौधरी की, जिन्हें की सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल PL चौधरी और माता सत्या चौधरी थी। कैप्टन सुनील चौधरी ने MBA की अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही सेना में आने का फैसला कर लिया था और उन्होंने CDS की परीक्षा पास की और 1 जुलाई 2003 को वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में प्रवेश पा गए।

श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन सुनील कुमार चौधरी की। सुनील कुमार चौधरी ने 10 दिसंबर 2004 को 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की बटालियन में कमीशन प्राप्त किया और उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो कोलकाता के फोर्ट विलियम में हुई थी। साथियों, 26 जनवरी 2008 को कैप्टन सुनील कुमार चौधरी को असम के तिनसुकिया जिले के नाओ थापर गांव में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया था।

साथियों, 26 जनवरी 2008 को कैप्टन सुनील कुमार चौधरी को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, लेकिन अगले ही दिन 27 जनवरी 2008 को 19वीं पंजाब के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रमित सक्सेना और लेफ्टिनेंट वरुण राठौर द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था, उस लंच में उन्हें शामिल होना था। लेकिन इसी दौरान उन्हें आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली और वे लेफ्टिनेंट राठौर और 5 अन्य जवानों के साथ आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए चले गए और इसी दौरान वो शहीद हो गए। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों का सुनियोजित और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार का लक्ष्य सीमांत गांवों को विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के सशक्त केंद्रों के रूप में स्थापित करना है, ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को अपने गांव में ही बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा की। विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित अपने आवास पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और आमजनों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निवारण के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के स्याही देवी मंडल में कठपुड़िया से कलोडिया कंतुनिया तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों को चिन्हित कर 100% स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार जिले के रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रक में हाईटेंशन बिजली की लाइन गिरने से आग लग गई। अग्निशमन सेवा की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया और ट्रक का डीजल टैंक फटने से बच गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के युगल स्वर में, जिसे लिया था फिल्म जुनून से। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700।
0: श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में पीपुल्स पद्मौन आकाशवाणी के अंतर्गत डॉक्टर पुण्यमूर्ति नतेसन से की गई बातचीत।

FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं जुदाई फिल्म से अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रांझना फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था अरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। अब आपको सुनवाते हैं राधे श्याम फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, जिसे संगीतबद्ध किया और लिखा है मिथुन ने।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे राधे श्याम फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, जिसे लिखा है सुब्रत सिन्हा ने और हिमेश रेशमिया का संगीत है। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

0: शानदार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे विशाल ददलानी और अनुषा मणि की आवाज़ में, जिसे लिखा था अन्विता दत्ता ने, संगीत अमित त्रिवेदी का था। इसी के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित एक आश्रम में स्थापना दिवस

0: वापस और संत सम्मेलन में भाग लिया। कहा, संतों के सहयोग और आशीर्वाद से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। कहा, सीमांत जिले में विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है और अधिकांश विभाग पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्टेडियम को खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों को समर्पित किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के स्याही देवी मंडल में कठपुड़िया से कलोड़िया कतुनिया तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उत्तराखंड राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने चंपावत में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग पर विशेष बल दिया। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 73 समस्याएं दर्ज की गई। मौके पर 41 समस्याओं का निस्तारण, शेष शिकायतों को त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सतेंद्र नामदेव का पखावज वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं ताल धमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सत्येंद्र नामदेव का पखावज वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे ताल धमार। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी। आज हम इनके जीवन से जुड़ी बातें करेंगे और आपको सुनवाएंगे इनके अभिनीत कुछ गीत। अपनी दमदार आवाज और अभिनय से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले हमारे आज के कलाकार हैं अमरीश पुरी जी। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, 22 जून 1932 को नवाशहर पंजाब में।

श्रोताओं, अमरीश पुरी जी को एक्टिंग का बहुत शौक था और वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपने जुनून को पूरा करने के लिए नाटक मंडली में काम किया और उस समय के नवोदित नाटककार थे सत्यदेव दुबे, उनके लिखे नाटकों में वो एक्टिंग किया करते थे और ये नाटक पृथ्वी थिएटर्स में प्रदर्शित होते थे। अमरीश पुरी जाने माने थिएटर अभिनेता बन गए और उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए वो संघर्ष करते रहे और फिल्मों में उन्हें काम मिला काफ़ी समय के बाद। 1970 में उन्हें काम मिला फिल्म प्रेम पुजारी में, उसके बाद 1971 में आई रेशमा और शेरा और इसी साल पिक्चर आई थी हलचल, इन फिल्मों में उन्हें काम मिला। और इसके बाद जब वो छोटे मोटे रोल कर रहे थे तो इस बीच मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने निशांत 1975 में आई, 76 में मंथन और 77 में भूमिका, 78 में कोंदूरा और कलयुग 1981 में ये फिल्में आई, इन फिल्मों में इन्हें काम मिला। और इसके बाद गोविंद निलहानी की फिल्में रहीं आक्रोश जो कि 1980 में आई, अर्धसत्य 1983 में और तमस 1986 में आई, इन फिल्मों में इन्हें काम मिला। और अमरीश पुरी जो है कि बॉलीवुड में एक खलनायक के रूप में जाने गए, उन्हें पहचान मिली तो बॉलीवुड के एक खलनायक के तौर पर। आइए आपको सुनवाते हैं उनका अभिनीत त्रिदेव फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अमरीश पुरी को साल 1980 में आई फिल्म हम पांच में एक दमदार खलनायक के रूप में पहचान मिली और उन्होंने विधाता, मेरी जंग नगीना, दामनी, फूल और कांटे जैसी सुपरहिट फिल्में दी। और इसके अलावा 1987 में फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, और इस फिल्म से उन्हें जो पहचान मिली, इसमें उन्होंने जो किरदार निभाया था वो आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में मोगेम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग आज भी लोग बोलते हैं, और ये किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि अमरीश पुरी बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गए।

श्रोताओं, अमरीश पुरी जी को पहला बॉलीवुड पुरस्कार मिला था फिल्म मेरी जंग में 1985 में, और इस फिल्म में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी जीडी ठकराल की, इस अभिनय के लिए, उनके इस रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद उनके जो अभिनय का सफ़र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। उन्होंने मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, भुजंग, घायल, इन फिल्मों में, घायल फिल्म में बलवंत राय, दामनी का बैरिस्टर चड्ढा और करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह जैसे दमदार किरदारों को निभाया। इनके इन किरदारों को भला कैसे भुलाया जा सकता है, और यही फिल्में रहीं जब वो बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलेन बन चुके थे। इसी दौरान रिचर्ड एटनबरो की फिल्म जो गांधी थी 1982 में आई थी, एक छोटी सी भूमिका में हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग का ध्यान जो था अमरीश पुरी जी की तरफ गया, और उन्होंने अपनी फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम जो कि 1984 में आई थी, उसके जो मुख्य खलनायक थे मोला राम, उसका किरदार इन्हें निभाने के लिए दिया, और इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवाया था, जो बाद में इनका सिग्नेचर लुक बन गया।

0: श्रोताओं, अमरीश पुरी जी के जीवन की फिल्में रहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेस, विरासत, और ये फिल्में बहुत ही पसंद की गई। 12 जनवरी 2005 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और कार्यक्रम एक कलाकार को यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार

0: ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: .5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 5:45 पर श्रोता सुनेंगे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे। गढ़वाली भाषा में समाचारों का समय रहेगा शाम 6:50।

कुमाऊनी भाषा में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 7:45 पर पीपल्स और पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत श्री मोहन नागर की बातचीत आप सुनेंगे शाम 7:25 पर। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा हिंदी वार्ता का।

रात्रि 8:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे हेमंत कुमार के गाए गीत। रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से, और स्पॉटलाइट कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:15। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

शैल संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:30, जिसमें आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00।

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार होंगे निधन सिंह। दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम महिला जगत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 होने को है। आइए सुनते हैं पीपल्स पद्मौन आकाशवाणी के अंतर्गत श्री विजयनाथन कामकोटी से बातचीत।

0: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 5:34 42 सेकंड स्टूडियो की घड़ी से आइए आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
4: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
5: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
6: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
7: नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रा पंत बोल रही हूँ। हमारे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, समाज को सुधारने के लिए, परिवार को सुधारने के लिए बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, क्योंकि हमारा एक परिवार जो होता है ये समाज की इकाई होती है। जब परिवार अच्छा होता है तो समाज भी अच्छा होता है। हमारे युवाओं के कंधे में पूरा परिवार तथा समाज का बहुत बड़ा बोझ है। बोझ मतलब उनका संकल्प है, उनका उद्देश्य है हमें एक अच्छा समाज देने का, भारतवर्ष अच्छा करने का, देश प्रेम की भावनाएं लाने के लिए। तो हमें सब लोगों को मिलके नशा मुक्त भारत अभियान में सहभागिता करनी है। जो बच्चे हैं, युवा बन रहे हैं, उनको एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। नशा कभी न करें। नशा करने से केवल अपना शरीर नहीं खराब होता है, पूरे परिवार खराब हो जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो अगर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो, मानसिक स्थिति खराब हो, तो समाज खराब होता है, फिर हमारा देश खराब होगा। इसके लिए हमें सबको मिल करके इस अभियान में जुड़ना है और अपना एक उद्देश्य रखना है कि हमारा समाज, हमारा परिवार एक बहुत पवित्र परिवार बने, पवित्र समाज बने। मैं चाहूंगी कि जो यंगस्टर्स हैं, अगल बगल उनके दोस्त कोई हो या उनके भाई बंधु, इस तरह के अगर नशा में को लत लग जाती है, कृपया करके आप जरूर से नजदीक के अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। और मैं कहूंगी कि आपका एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। यही उद्देश्य हमारे समाज को पवित्र करेगा, यही उद्देश्य हमारे परिवार को बहुत अच्छे ऊंची चोटियों तक ले जाएगा। तो इस तरफ से अपना ध्यान हटा करके आप अच्छी सी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने संगीत में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, खेल वगैरह में अपना ध्यान लगाएं। जब कभी इस तरह के अगर कोई रास्ता आता भटकने का, कोशिश करिए उधर को न जा करके आप अच्छे एथलीट्स बनिए। और अपने परिवार के लिए जरूर सोचिए, अपने शरीर के लिए सोचिए, जो कि नशा करने से आपका शरीर बहुत खराब हो जाता है। केवल मानसिक या शारीरिक संतुलन ही नहीं खराब होता है, अपने घर का पूरा संतुलन खराब हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आप लोगों को सुविचार बेचना चाहती हूँ। युवा इस तरह से अपना ध्यान दूर करें और नशा मुक्त भारत को सक्सेस बनाने के लिए, सफलता की ओर ले जाने के लिए सब लोग इसमें सहभागिता करें। धन्यवाद।
0: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, 21 जून यानी कल हम सब ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रोताओं, योग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को योग बीमारियों से मुक्त रखता है, यह हमें मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत देता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। हमारे शरीर को योग लचीला और सक्रिय रखता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। योग हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ बनाता है, इसलिए श्रोताओं, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, प्रतिदिन योग करें। और सोचिए ना, जब योग से इतने फायदे हैं तो इसे करने में क्या परेशानी हो सकती है। इसीलिए आलस्य को भगाइए, योग को अपनाइए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि एक संकल्प है स्वस्थ भारत का। और श्रोताओं, इस बार की थीम थी स्वस्थ आयु के लिए योग, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे युवा बहुत छोटी छोटी उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश कि योग को अपनाइए, योग करिए, निरोग रहिए। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये एक गीत।

100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, शाम के 5:45 होने को हैं। आइए सुनते हैं पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत का सभ्य सुंदर अभिवन होकुण मीना उन्याल का छाड़ बटे को नमस्कार शिव सो
1: दीपक रावत को आप सब उठे नमस्कार और सब राज खुशी होला घर परिवार मा कुटुंबदारी दगड़ मा।
0: बिल्कुल
1: और मीना जी आप ठीक ठाक कुशल मंगल?
0: सब कुशल मंगल हो और हमार कुशल मंगल का दगड़ ही हम सदन ही भगवान बद्र विशाल से प्रार्थना करना लगे आछा कि हमर भाई बंदा जग की भी रहले सकुटुंदरी घर बोण राज खुशी रहे।
1: बिल्कुल और सुखी राज रहण खोण अच्छो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल और अच्छो स्वास्थ्य बने
1: हाँ
0: ब्याल सभी उन 4 बजे भी टेबल योगा प्राणायाम कर
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ
0: और योगा प्राणायाम करे कर सभी में फोन भी छे
1: हाँ
0: और फोटो खींचे कर खटाखट डाल दें सोशल मीडिया में।
1: हाँ तो फोटो तो खींचे लिए ना पर इन से कि भाई इन ना कि एक दिनों के तुम फोटो खिंचाई हाथ खोटा आंगड़ा तगड़ा कह रहे लेने और योग दिवस मनाया ना ना भाई ना साल भर अगर योग कर लिया तभी जाके स्वस्थ रह लिया और मस्त रह लिया।
0: बिल्कुल
1: और योग तो आदि अनादि काल बैठे चलनो चा तो वे थे अपना और स्वस्थ जीवन से स्वस्थ ढंग से समाज में रहो।
0: और भूले भी किए ना बल्कि पहले सुख हों
1: हाँ
0: निरोगी काया और
1: हाँ
0: निरोगी काया को कुछ ना कुछ कष्ट तो हम तक करने पड़ल
1: बिल्कुल
0: सुबेर भगत पर उठन पड़ल है।
1: बिल्कुल
0: और जौन बंड दिन बटे ब्याल बल योग कारना तो हाथों खोटो दुखना लगे आछन
1: हाँ
0: बल।
1: मीने जी आप देख दरा वाला कि पहल घर गाँव में जो छा घर गाँव भी हूं छा योग दिवस
0: ना ना
1: है
0: जड़ भी नहीं छे
1: खेत तांगलो हल तांगलो को जाना छा पूर्ण मा वही योग हो गया है।
0: वही योग
1: बाहरी हल उठो साफ जाना छे ये पूरा बटे कर वे पूरा जाना छे वही घासो को जाना जंगल तो भी योग हो गया फंचू धीम मुंडम तब यार बल घर आना छे बल दूर बटे चलते चलते।

0: चल्दा ऊ योग हो गया
1: बिल्कुल
0: है और स्वस्थ रहे नमस्त रहे।
1: और अब घर में बैठ बैठे काम नहीं ना,
0: बस
1: अब जो काम बचे तो बैठना काम हो गया।
0: हाँ
1: खास करे के अब हमारे जो भाई बहना छन
0: हाँ
1: कंप्यूटर में बैठे काम करना छन,
0: हाँ
1: तो उनको तो योगा बहुत जरूरी छ।
0: बिल्कुल
1: और जो हमारे दीदी बहनी छन
0: हाँ
1: घर में, अब खड़े खड़े खाना बनाना छन, बच्चों को टिफिन तैयार करना छन, है घर
0: हाँ
1: पर एक पर खारो काम है जान,
0: हाँ
1: लेकिन आप पर ध्यान नहीं देना ना। तो सभी बहनों से भी हाथ जुड़े छे कि जरूर ध्यान दिया, नहीं थर 40-50 बाद घुंड भी और मुंड भी और सब दुखने लग जा।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखो बोल देनी कि मशीन चनी राली तो भैया शरीर सरेल अच्छो रहो स्वस्थ रहो बढ़िया रहो है ना।
1: तो सभी से हाथ जुड़े छे कि अगर अपन स्वस्थ रहना तो योगा प्राणायाम करो, बगत जरूर निकलना, सोशल मीडिया पर फोटो डाले कुछ नहीं होंद, और योग करना रहना,
0: हाँ
1: जैसे क्या हम स्वस्थ रहला, हमारे कुटुंबदारी स्वस्थ रहे, सारे समाज स्वस्थ रहा।
0: हाँ योगा का अलग अलग रूप छ जन हम सब पता। श्वास श्वास सबसे महत्वपूर्ण योगदान जी योग में भाई। आप जब अनुलोम विलोम कर दो तो आम श्वासों के पूरे खेल छ।
1: जी
0: आप श्वास से आप साथ दिले तो जीवन में बहुत कुछ आप साथ दिले। अब
1: बिल्कुल
0: जन आजकल आजकल आप देखना चाहो एंगजाइटी जन चीज होनी छे ना तो वहाँ भी जो छ योगा बहुत आप हेल्पफुल छ।
1: ध्यान देना जरूरत
0: ध्यान
1: है।
0: देना जरूरत है जान योगा का आप थे लाभ मिले वहाँ को। और वही दगड़ दगड़ जन आप मांसपेशियों की जो दिक्कत है इनका दुगत है वहाँ से भी योगा से आप जब ठीक हो जाए तो योगा लगातार करता रहा और स्वस्थ रहा।
1: कई असाध्य रोग छ ना,
0: हाँ
1: और अब इन करता कि कार्यक्रम बाबत अपने सुंदर भाई बहन होते बता दी दो।
0: हाँ
1: गढ़वाल कविता पाठ आप खातिर लई छन, हमार कवि छन श्री मरे महेंद्र प्रसाद ध्यानी, और यूं जो कविता पाठ छ घड़ेक में पेटोला, पहले इन करता कि एक कुमाऊनी गीत अपन सुंदर कौन पेटे दिंदा, गीतांग छन रमेश जोशी और चंद्रकला पंत, दगड़ में छन रविवार, तो आवा सुंदा।

0: आंखे में चश्म लगो लो तब छोरी छोड़ो ना, आंखे में चश्म लगो लो तब छोरी छोड़ो ना।
1: बे बुढ़ा की लंबी दाढ़ी, बे बुढ़ा मैं रोनी ना, बे बुढ़ा की लंबी दाढ़ी,

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
6: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
7: रविंद्र, ये बताओ, सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
8: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
7: सच में? क्या क्या है उसमें?
8: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
6: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
9: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
10: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
9: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
10: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
9: और परिणाम?
10: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
9: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
11: तो दगड़ियों, भी आप सुनना चाहिए कुमाऊनी गीत रमेश जोशी और चंद्रकला पंत की आवाज़ में। और दगड़ियों, जन की साहित्यकार होने ना, जो गढ़ोली में लिख देना, कुमाऊनी में लिख देना, जौनसारी में लिख देना या कहीं भी भाषा में लिख देना
12: जी,
11: समाजों को उनको तो बड़ा योगदान है कि वो संस्कृति संरक्षण कर देना, भाषा को संरक्षण कर देना और आने वाले जो लोग होने ना, आने वाले जो बच्चा होने उन तक अपने साहित्य पहुँचे देना, अपने भाषा पहुँचे देना।
12: बिल्कुल, और निबंधन की सबसे बड़े अब लिखना मौसम होने वाले बसंत ऋतु कवियों को, और डाल बूटा को तले बैठे रहने और डांड काठी मजन और सुंदर सुंदर कविता लिखेगा ना हम कौन पैटर्न।
11: हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर दगड़ियों गढ़ोली कविता पाठ आप लोग सुन लिया श्री महेंद्र प्रसाद ध्यानी की आवाज़ में।
13: मी आज आपते हैं कविता और एक गीत भी सुनो लो। तो पहली एक कविता देखा, कविता को शीर्षक चा पहाड़। पहाड़ साख्यों बिटी खड़ा छन, पहाड़ साख्यों बिटी खड़ा छन, पहाड़ कठोर छन निर्दयी छन, पहाड़ कठोर छन निर्दयी छन, पहाड़ मा उकाल च उंदार च, यख बांझ छन बुरांस छन छोया छन छचड़ा छन, यख बांझ छन बुरांस छन छोया छन छचड़ा छन, नौला छन मंगरा छन और लगल्यों परें ठंगरा छन, छोया छन छचड़ा छन नौला छन मंगरा छन, लगल्यों परें ठंगरा छन और ठंगुर होणु हरेके बसे बात नी छ। पहाड़ माँ निमिलदी चाट पकौड़ी, पहाड़ माँ निमिलदी चाट पकौड़ी, बड़ी नी छन कैक लदवड़ी, अस्पतालों में डॉक्टर निछन और जग छन तक दवे निछन, अस्पतालों में डॉक्टर निछन जग छन तो दवे निछन, तब भी पहाड़ में मन खिछन, तब भी पहाड़ में मन खिछन और मन खिछन तो मन ख्यात बिच, रोजगार पैदा करा विकास लियावा और गाँव गाँव सड़क लियावा, रोजगार पैदा करा विकास लियावा गाँव गाँव सड़क लियावा।

ह्या पहाड ते पहाड रहन दिया। पर ह्या पहाड ते पहाड रहन दिया, जै दिन उकाल निरेली जिंदगी बन जाली सैण। जै दिन उकाल निरेली और जिंदगी बन जाली सैण, वे दिन पहाड़ भी पहाड़ निरण, वे दिन पहाड़ भी पहाड़ निरण। मेरी दूसरी रचना चा ऋतु वर्णन। तो अजगाल रूढ़ी मौसम चलनु चा, तो पहल रूढ़ी कि रूढ़ी का घामन माटी च जलनी, धरती में जग जग पड़ गिन सैल, बटोया मनखी पशु पंछी भी तिसला तड़फना हो गिन घैल। सुबेर व्याखुनी द्वी दिन सुबेर व्याखुनी द्वी दाने की, पीठ में देखा द्वी मुट मैल, पिपला डाली की छैल बनी चा, मैं बिचाणु छो मिली जो छैल। वे के बाद बस गाल कि चम चमक चाल चुलंख्यों, चुई चुई कर दिन चिलगट अब, खम खांसिक खकरु थुक दिन, बुढ़िया जी बल दिन मर दू अब। बादल लग दिन जिकुड़ी बुजेंद, गात भी झर झर कर दा अब, खेती हरियाली होली इसोचिक, छप छप जिकुड़ी में पढ़ दा तब। एक बाद ह्यूंद कि कट कट कट कट कट गदिदा तुड़ी, झम झम झम झम पढ़ दू, सर सर सर सर बथौ सरक दो, सूरज हिट दा ढयू ढयू। मुल मुल है सी बणी गेन सिस करी, कंडली को गात सी गदलू हुयू। मुल मुल है सी बणी गेन सिस करी, कंडली को पात सी गदलू हुयू। तुम बिन स्वामी निर पराण, हाड़ मांस की फंची हुयू। मौल्यार गलन ले गए यूं डांड्यू को, फोटक घूम दिन आंखों मां, जखमा देखा तखमा ऊंग, स्वाणा सुपिन्या आँखों मा, मुखड़ी म गलवड़ी बण म बुरास, हुए गिन लाल चचगार, खित खित हैं सिद फ्योली बनीचा, जिकुड़ी म धरती म मौव्यार। तो यू ऋतु वर्णन छो। अब एक बाद में स्त्री विमर्श पर आधारित एक आह्वान गीत सुनाणु छो। कि जाग गढ़ की बांध जाग, जुल्म निभणी जो बणाग, जाग गढ़ की बांध जाग, जुल्म निभणी जो बणाग। तुम निछा कुट

भीतर रामी बाणी कचे देली तू ढोंगी जोगी जो आलू की रामी बाणी कचे देली तू ढोंगी जोगी जो आलू की तिलू रो तेली बाणी क दुश्मनो ते काटी देली तुई चौरा ना बेमु देख्याली सब्यू ना चौरा ना बेमु

रे भीतर। हर भाषा तू जांची सकदी, हर भाषा तू बांची सकदी, हर सवाल जांची सकदी। हर भाषा तू बांची सकदी, हर सवाल जांची सकदी, उड़े सकदी बड़ू जहाज, तोप भी चले सकदी, उड़े सकदी बड़ू जहाज, तोप भी चले सकदी। निर्भगी निरेगे तू अब निर्भगी।

भीत माँ का रूप मानौनी सी देखण दरस मकौनी सी, माँ का रूप मानौनी सी देखण दरस मकौनी सी, दगड़िया देवदार सी धागे की सुमार सी, दगड़िया देवदार सी धागे की सुमार सी। बात बात मध्य क्या लती तै तू, बात बात मध्य क्या लती तै तू, बणी जे तू कंडली झपाग, आग भी त्यारा भीतर, रोश भी त्यारे भीतर, जाग गढ़ की बांध जाग, जुलम नी बणी जो बणाग, तुम नी छा कुटमणि कुंगले अर

भीतर। ये गीत का बाद अब आप तें सुनाणु छौं एक छोटी सी गजल का दुई चार शेर कि ऊं तें मैं से बहुत लगोच सैद, ऊं तें मी से बहुत लगोच सैद, घैल जिकुड़ी माँ ऊं की दियों घोच सैद। ऊं तमी से बहुत लगोच सैद, घैल जिकुड़ी माँ ऊं की दियों घोच सैद, लोग बोल दिन ऊन करी अति जुलम, लोग बोल दिन ऊन करी अति जुलम, पर मी मन दो यू ऊं कु सुभोच सैद। आज अजान बन दिन और कुछ निठुर भी, आज अजान बन दिन कुछ निठुर भी, मी सोच दो बगत कु बहोच सैद, भूख तीस हर ची निंद भी नहीं आंदी, भूख तीस हर ची निंद भी नहीं आंदी, ऊं पर नए नए प्रीत कु समोच सैद, ऊं पर नए नए प्रीत कु समोच सैद। अब देखी कि खड़ी उकाल च माया, अब देखी कि खड़ी उकाल च माया, सोच दु छौ कि लदौ लदौ च सैद, सोच दु छौ कि लदौ लदौ च सैद, ऊं तें मी से बहुत लगौ च सैद, घैल जिकुड़िम ऊं की दियों घोच सैद। तो आज के यो कविता पाठ को समापन गजल का दुई चार शेर का दगड़ी।

0: गढ़वाली कविता पाठ भेवनो अभ्यापन सुनो। हमर कवि छे श्री महेंद्र प्रसाद ध्यानी।
1: अरे दगड़ियों, अब आप तो सुनोला संतोष के आवाज़ में एक गढ़वाली गीत और लिया सोना गीत।

0: 105.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। आइए सुनते हैं पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत श्री अशोक कुमार हलधर से बातचीत।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हलधर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
3: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन वर्किंग करना पड़ता है, तो गुड्स ट्रेन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है। वो झड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करना पड़ता है, और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
2: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
3: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है, वो काम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसका बाद जब हमारा माने नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष शेष टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसका बाद जब घर फेंकता, वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिखे, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत ने टोबी के में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है और फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन भी वैसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा, और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है, जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा, कुछ चेतना समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रवृत्ति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है, जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
2: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है, तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है, और हम जो हमारा काम हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा का साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधि के रास्ते में पुलिस पदाचरण, नहीं कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना हमारा इंस्पिरेशन वाला, समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है, मेरा समाज को मिला, हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं, जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मानुष, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है, उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
2: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
3: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए, कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है, अविराम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, रुकावट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा, उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा। यही मेरा सोच है, और यही मैंने सोच हम संसार को, मानुष आदमी को, समाज को देने चाहता है, जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है, तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए, मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है, भीड़ करता है, अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है सो एक लाय है, सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है, तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दृढ़ सिद्धांत है।
2: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
3: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए, आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में ऐसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था, इतना मोबाइल फोन भी नहीं था, और टेलीफोन भी बहुत आदमी को पास नहीं था, बड़ा बड़ा आदमी जो था उसको पास टेलीफोन का मुख्य व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को, परिवार को बचाना है, रोजगार करना है, और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, तो पहले अपना विकास करो, उसके बाद

0: विकास, उन्होंने जाओ चिंता करो तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग मेरा को मिला इनिशियल स्टेज से। चीज हम अपना से सोचते, उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ वो तो टाइमिंग फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला, किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही जाता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको समझो रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपने प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: बेबंदो विशेष कार्यक्रम का बाद फिर से ग्राम जगत में आप सभी को स्वागत छ।
1: बिल्कुल। और मीना जी जन आजकल हम देखना जो समाज हम की बूढ़ बूढ़े जो छ बुजुर्ग लोग जो छ उनके प्रति जो छ आदर को भाव धीरे धीरे
0: कम हो
1: कम हो छ।
0: बिल्कुल। और हमारे बुजुर्ग न कुटुंबदर थे पालन पोषण में अपर सरद जिंदगी खपे दे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम दिखना चाह कि वो ध्यान कम दे चो ये सभी पर लागू नहीं होना। हमारे भाई बंदा जो सुनना वाल जो अपर दान से सेवा करना वाल तो बुर लगन वाल। लेकिन ये बात सभी को नीचे कुछ घरों में तो बुजुर्गों को खूब
1: भगवान जन पूजेणो छ पूजेणो छ
0: जे को अधिकारी भी छ।
1: हाँ तो उनकी पैतृकता अग्नि जो छ आप वरदान और बुजुर्गों को सम्मान बुजुर्गों को देखभाल बहुत जरूरी छ। दगड़ियों के लिए क्यों जीवन को चक्र छ जे अवस्था में आज ओ छन बोल तुम भी हूँ
0: बोल नहीं बल्कि जगदी मुझे हलवल पिछने हो।
1: बिल्कुल।
0: और भवनो अपन जे घर में जो हमारे दाना सेण छन ना उनको सेवा पैण हो तो हमारे नानते ना दिखना रहन।
1: हाँ।
0: और जो घरों में वट वृक्ष जन बुजुर्गों को छेल च वे घर जो बच्चा होंदन उस संस्कार होंदन। कई बार अपना दादी दादी मंगन नानी नौ मंगन कहानी भी सुनदन कथा कहानी है ना। अब खैर जमान चल गया अब तो फोन हो गया ना। लेकिन फिर भी जब बुजुर्ग छन वो अपने बच्चा होंदन कुछ ना कुछ कहानी सुनाने लगे रहन।
1: बिल्कुल बिल्कुल दगड़ियों। और बुजुर्गों को जो संरक्षण होंगे वहाँ से आप अपड़ संस्कृति थे विरासत थे समझ दो आप थे अपड़ समाज को जो इतिहास वे बारे में पता चल दे और अगले खुण जीवन को एक नई दिशा सही दिशा मिल दे। इसलिए दगड़ियों जो भी बुजुर्ग छन वो आपसे कुछ नहीं मांग देने कुछ नहीं चाह देने बस वो चाह देने कि यो हमारी बात सुना समझा। अपुड़ व्यस्त जो वे समय चाप को वे बटे कि थोड़ा समय अपने बुजुर्गों ते जरूर दयावा उनको समण उनकी बात जरूर सुना किले कि उन थे अकेला पन्ने लगोलो और वो समझ ला कि हम ते कोई सोना चण सुन दड़ा छे छिन वो सोना राला आप थे कि और आप ऊँ ते सुना रह लिया और अपुड़ बात आप तक पहुँचाना राला ताकि आप थे कि अग्नि को जीवन की एक नई दिशा मिले ली। तो यूँ छुई बातों के दगड़ आप दगड़ियों आप थे ले जो हम जौन सारे की छोड़ और जगत लाल डोगरा की आवाज में सुनोला एक सुंदर सी जौन सारे गीत पर वे से पहले यू रैबार।
2: ये हेलमेट अच्छा है सेफ है क्या?
3: इस हेलमेट पर ISI मार्क है
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: The all-new Nissan Revive अब CNG में
7: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर KG की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
8: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाए। शर्तें लागू।
9: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200।
10: यार बीबीए एमबीए तो करना है लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
11: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
10: अच्छा मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
11: बिल्कुल नहीं। उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर
10: और परिणाम
11: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
10: वाह ICM देहरादून 6 ओल्ड मसूरी रोड राजपुर देहरादून।

0: और अब हो गया ही उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों को बगत तो हूँ वाल से तो आवाज सुनता घड़ेक माँ उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा संत समाज के मार्गदर्शन और सहयोग से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा की, जिले में विकास कार्यों की प्रगति को संतोषजनक बताया। उत्तरकाशी में 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का समापन, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी युवाओं को सम्मानित किया गया। और पौड़ी नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडो स्टेडियम का शुभारंभ, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शन और सहयोग से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। आज हरिद्वार में आयोजित विशाल संत सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में संत समाज का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम के पुनर्विकास जैसे कार्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
1: भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, के साथ साथ जो भूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर होने बन गई हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो, आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी तैयारियां हैं। सभी संत लोगों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन, अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो।
0: वहीं रुद्रप्रयाग जिले के नगरासु स्थित गुरुद्वारा साहिब की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं होने दिया जाएगा तथा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत बनाए रखा जाएगा।
1: मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है, और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है, अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं, एक मान्यता है। तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे।
0: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने आज पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और युवाओं व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री चौधरी ने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ जिले में विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है और अधिकांश विभाग पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल ने आज गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में नवनिर्मित ब्लड सेपरेशन यूनिट कक्ष और अस्पताल की 4 दीवारी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में दूरदराज के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। लंबे समय से चिकित्सालय में ब्लड सेपरेशन यूनिट की मांग की जा रही थी, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट की स्थापना होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
2: हॉस्पिटल में चूंकि ये पूरे 4-5 विधानसभा के केंद्र में है और काफी यहाँ जनता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेती है, तो यहाँ पर हमारे ब्लड सेपरेशन यूनिट नहीं थी और जिसकी डिमांड लंबे समय से यहाँ से की जा रही थी, आज उसका हमने विधिवत रूप से उसका लोकार्पण यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ हमारे चूंकि बाउंड्री वॉल हमारा इस हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण उसमें अतिक्रमण हो रहा था इसकी जमीन पर लगातार, आज उसकी बाउंड्री वॉल का काम का भी हमने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी दीवार थी पिछली बरसात में टूट गई थी सुरक्षा दीवार, वो भी आज पूर्ण हो गई, उसका भी लोकार्पण किया है। और हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर टाइल और सीसी मार्क का निर्माण का आज हमने लोकार्पण किया है।
0: कैबिनेट मंत्री रेखा रे ने आज अल्मोड़ा जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के तहत कठपुड़िया से कलोड़िया कतुनिया तक बनने वाले मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़कें केवल संपर्क का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे किसी भी क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि की जीवन रेखा होती हैं। उन्होंने कहा कि इस नई सड़क के निर्माण से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत उत्तरकाशी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस विशेष राष्ट्रीय एकीकरण और अध्ययन कार्यक्रम के तहत 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश से आए युवाओं ने उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्रों, भारत चीन सीमा और वाइब्रेंट विलेज का दौरा कर जमीनी स्तर पर हो रहे विकास कार्यों, स्थानीय संस्कृति और सीमांत जीवन की चुनौतियों को करीब से समझा। पूरे सप्ताह अनुकरणीय अनुशासन और सीमांत क्षेत्रों के अध्ययन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सीमांत क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति, वहां की भौगोलिक चुनौतियों और प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट विलेज विजन से सीधे रूबरू कराना था। विभिन्न राज्यों के युवाओं ने यहां जमीनी स्तर पर जो अनुभव प्राप्त किया है वह विकसित भारत 2047 के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्टेडियम में खिलाड़ियों को अब बेहतर व सुरक्षित वातावरण में अभ्यास और प्रतियोगिताओं की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर श्री पोरी ने कहा कि इंडोर स्टेडियम का सौंदर्यीकरण अत्यंत आकर्षक और उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, जिसे निर्धारित समय में पूरा किया है। उन्होंने नागरिकों और खिलाड़ियों से स्टेडियम के संरक्षण और रखरखाव में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।
4: ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और जिलाधिकारी महोदय और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सहयोग से इसको बहुत जल्दी तैयार किया। काफी समय से ये जो है बहुत बुरी स्थिति में था, टूट फूट इसमें बहुत ज्यादा थी। निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बड़ी सौगात हुई है कि आज इसका उद्घाटन हो गया है। आज से बच्चे इसमें आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना खेल खेल सकते हैं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं सब लोग।
0: वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा, स्टेडियम को उच्च मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है, जो पौड़ी नगर के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा।
5: अब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया, जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया। हमारी जो वुडन फ्लोर था मेनली उसी का काम था, वुडन फ्लोर्स को, मैटिंग को, सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा बनाया गया। और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, तो पानी आदि के भी कूलर्स और जो वाटर फिल्टर्स आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ अर्जित करें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो पौड़ी के लोकल बच्चे हैं वो यहीं पे आकर प्रशिक्षण करते हैं। और एक कोच भी हमारा कम था, तो अभी कुछ समय पहले एक नया कोच भी बैडमिंटन के लिए रखे गए हैं, जो एक यहां पे स्पेशली इंडोर के लिए रहेंगे और एक ऊपर रांची के।
0: उत्तराखंड राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने आज चंपावत में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि एलआर एक्ट के तहत 6 माह से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा संत समाज के मार्गदर्शन और सहयोग से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा की, जिले में विकास कार्यों की प्रगति को संतोषजनक बताया। उत्तरकाशी में 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का समापन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी युवाओं को सम्मानित किया गया और पौड़ी नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: जब वक्त की कीमत सबसे ज्यादा हो तो भरोसा कीजिए भारत के अपने स्पीड पोस्ट पर, जरूरी कागजात, बिजनेस शिपमेंट या 35 किलो तक के पार्सल की हर पार तेज, सुरक्षित और समय पर डिलीवरी। BNPL क्रेडिट, बड़े पार्सल पर वॉल्यूम छूट और मुफ्त पिकअप, आपका काम होगा अब और भी आसान।
10: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर या आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाए।
11: चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड डाक परिमंडल द्वारा जनहित में जारी।
12: उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी को कार्यक्रम में स्वागत करना लगे आचा बेवनो मिछो मीनाव नेयाल
13: और मिछो दीपक रावत। तो दगड़ियों, अब जन के हमें भेटे कि कार्यक्रम हम छी बात लगा दो तो उन्हें बेटे, अगर आपका हुंगरा आना राला हम तक पहुंचना राला तो हम तो समझ मालो कि ग्राम जगत कार्यक्रम ठीक ठाक चलो कन चलनु आप तक कन लगनु हम तो पता चल और यहाँ का बाना आप तक हम तो चिट्ठी लिखन पड़ ली और जन के आप तक पता कि हमारे चिट्ठी पत्री को पता च कार्यक्रम चिट्ठी पत्री ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001 और झटझटाक जो पता च वो चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। तो दगड़ियों झटझटाक से फटफटाक से चिट्ठी लिखा और अपन होंगरा हम लोगों तक पहुंचावा।
12: और भाई बहनों, आज 22 जून छन तारीख, तो आज दिन थे सारे दुनिया वर्षा वन दिवस का रूप में मनान। ये दिन थे मनान का उद्देश्य कि हम सभ्य वर्षा वनों का महत्व जानवा समझवा, यानी कि जान समझकन यूं का बचाव करवा, संरक्षण करवा। भाई बहनों, यूं वनों में अनेक प्रकार का डाला बूटा रहन, जलड़ा बुटला और जड़ी बूटी दवाई काम है ना जो, ये सब एक दूसरे से जुड़े आ रहे हैं ना, जे को जीव जय विविधता बोले जान। और ये सब एक दूसरे पर निर्भर छन। यदि ये माँ असंतुलन हो जान तो जो सारा चक्र छ ना पारिस्थितिक चक्र, तो वो बिगड़ जान। जन की आजकल थोड़ा बिगड़ी हो क्या है कि आप दिखना वेल की असंतुलन से मौसम का जो चक्र च, कई बार बरखा, कई बार मतलब कोई हिसाब ही नहीं, जैसे क्या आज कि खेती बाड़ी पर भी असर पड़ो छो। तो ये सब असंतुलन से ही जो बिगड़ी हो ना वैसे ही, तो हम सभी होते हैं अपन बोणों को संरक्षण करने वाले। कुल मिले कि जो हमारा डाला बूटा छन ना ऊपर हम सब भी आश्रित छा और पर्यावरण का संरक्षण में भी यूं महत्वपूर्ण योगदान छ। अब भाई बंदो बस के लगन वाल छ, तो आवा सब आज बटिक ही संकल्प लेवा कि खूब पौध लगावा, डाला लगावा, ऊँता बचावा। अपन जो हमारे पुराना छन पूर्वज छन ऊँ नौ पर भी हम डाल लगे सकदा, या फिर अपन जन्म बारह कुणों अपन नौ न्यालो जन्म बारह कुणों डाल लगे सकदा, एक यादगार भी रह जाए ना। तो जंगल छन तो हम छवा, जंगल छन तो पैणच, पैणच तो खेतीबाड़ी च, खेतीबाड़ी च तो अन्न भी तभी होंद और हम सभी अन्न पर आश्रित छा। कुल मिले के घूम फिरी कन उकियाँ तो डाल संरक्षण करा, ऐसु बस काल संकल्प लिवा कि हम उन्हें इतिक डाल लगना ना इतिक बचान जा।
13: बिल्कुल मीना जी, और भाई जंगल और बरखा यूं दियों को एक दूसरे से सीधो सीधो रिश्ता छ। जंगल राला तो बरखा होने राली, बरखा होली तो जंगल राला, और जंगल राला तो बरखा होली, और बरखा होली तो मौसम बदललू के लेके अब बरखा बरसात आने वाले छ। तो सावधानी से सावधान रहें बदलता मौसम में।
12: बिल्कुल
13: यूं छुई बातों के दगड़, अब दगड़ियों एक बार दोबारा जन्ना कुमाऊं की छोड़ और गोकुल सिंह बिस्टे और साथियों की आवाज़ में सुनो लो आप था कि एक सुंदर सी गीत।

0: गोकुल सिंह बिष्ट व दगड़ियों का गयु अभ्यापन सुनियो कुमावनी लोकगीत। और अब कार्यक्रम बटोल का बगत हो गया भोल नया अंक का दगड़ फिर से भिटोला। तब तक अकड़ो मीना उनियाल
1: दीपक रावत को आप सब की नमस्कार और हम थे कि ग्राम जगत बटे की आगे दयावा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 6:50 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं गढ़वाली भाषा में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, गढ़वाली महा देहरादून बटी प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में सोनिया खुकशाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोल संत समाज का मार्गदर्शन और सहयोगन हरिद्वार में आगामी कुंभ थे दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कारी, जिला में विकास कार्यों की प्रगति थे संतोषजनक बताई। टीवी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य थे हासिल करना खुणे देहरादून जिला में सही स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। और पौड़ी नगर का बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमों को शुभारंभ, आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित ये स्टेडियम थे खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ी खुणे समर्पित करे गयु। और अब समाचार विस्तार बटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि संत समाज का मार्गदर्शन और सहयोग हरिद्वार में आगामी कुंभ थे दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। आज हरिद्वार में आयोजित विशाल संत सम्मेलन में उन बोले कि सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन में संत समाज को योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री ने बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नए युग का साक्षी बनो। उन बोले कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास जनी कार्य भारत की आध्यात्मिक विरासत थे नए ऊर्जा प्रदान करना छिन।
4: भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, के साथ साथ दो भूमि उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर रोने बन गए हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो, आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी तैयारियां हम सभी संतों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो।
3: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने आज पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कारी, विकास योजनाओं और

0: योजनाओं को लाभ पहुंचाने खुणे विशेष प्रयास करने का निर्देश दीन। प्रदेश में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित होनी च और कखी भी कोई व्यवधान नहीं च। रुद्रप्रयाग जिला का नगरासु स्थित गुरुद्वारा साहिब में गत 20 जून में हुई घटना का संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्र ने बोले कि हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी च। उन्होंने बोले कि कुछ माध्यमों में यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित होनी छ, जो की वास्तविक स्थिति दगड़ कोई भी संबंध नीच। जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील करी कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
1: नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत, और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है, गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
0: वखी पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने स्पष्ट कारी की श्रद्धालुओं और यात्रियों थे गुरुद्वारों में आवागमन सामान्य रूप से जारी छ। लंगर, अरदास और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित होनी छी। उन लोगों थे अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील करी।
2: मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य थे हासिल करना खुणे देहरादून में स्वास्थ्य विभाग अभियान लगातार जारी छी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताई कि जिला में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों थे चिन्हित कैरी की 100% स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखू छ। निक्षय पोर्टल पर अभी तक लाखों संवेदनशील लोगों थे पंजीकृत किए जाणु छ और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हुई है। उन बताई कि देहरादून में हर साल 3.5 से 4 हजार टीवी का सक्रिय मामला समण अंदीना या खुणे बीमारी की समय पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दिए जाणु छ। स्वास्थ्य विभाग ने द्वि एक्सरे नए मशीन की मांग करी छ, जाल स्क्रीनिंग की रफ्तार और बढ़े जा सक और टीवी का मामलों में प्रभावी कमी लाए जा सक।
4: हमारी एक्सरे मशीन है, अलग अलग फैसिलिटी में है, तो वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है, इसमें तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं, उसको स्क्रीन करें। उस संबंध में लगातार एमओएसयू को निर्देश दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इंडोर मरीज हैं या जो भी वल्नरेबल ग्रुप के हैं उनका स्क्रीनिंग जो करें, तो वो उसको बढ़ाया जा रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें हम वृद्धि करेंगे और अच्छे रिजल्ट इसमें अब आएंगे। देहरादून में क्योंकि अब ऐसा महानगर है तो यहाँ निश्चित रूप से केसेस ज्यादा रहते हैं, तो एक समय पर अगर हम बात करें तो 3500 से 4000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस जो है वो रहते हैं।
0: पौड़ी का विधायक राजकुमार पौरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज नगर का बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम को शुभारंभ करी। आधुनिक सुविधाओं लो सुसज्जित ये स्टेडियम थे खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों खुणे समर्पित करे गयु छ। ये अवसर पर श्री पौरी ने जिलाधिकारी की सराहना करते हुए बोले कि पौड़ी नगर थे नए पहचान दिन में उनक महत्वपूर्ण योगदान छ। उन नागरिकों और खिलाड़ियों से स्टेडियम के संरक्षण और रखरखाव में सक्रिय योगदान आह्वानकारी। वखी जिलाधिकारी ने बोले स्टेडियम थे उच्च मानकों का अनुरूप विकसित करे गयु छ, जो पौड़ी नगर खुणे एक प्रेरणादायक उदाहरण बनल।
5: तब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया, जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया, हमारी जो वुडन

0: फ्लोर था, मेनली उसी का काम था, वुडन फ्लोर्स को, मैटिंग को, सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा बनाया गया। और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, तो पानी आदि के भी कूलर्स और जो वाटर फिल्टर्स आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ अर्जित करें, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो पौड़ी के लोकल बच्चे हैं वो यहीं पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और एक कोच भी हमारा कम था, तो अभी कुछ समय पहले एक नया कोच भी बैडमिंटन के लिए रखे गए हैं, जो एक यहाँ पे स्पेशली इंडोर के लिए रहेंगे और एक ऊपर राशि के।
1: उत्तराखंड राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने चंपावत कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग का कार्यों की समीक्षा करी। उन राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराना वादों को शीघ्र निस्तारण का निर्देश दींदे हुए बोले कि LR एक्ट का तहत 6 माह से ज्यादा बगत बटी लंबित मामलों थे प्राथमिकता का आधार पर निस्तारण सुरक्षित करे जा। आयुक्त ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना खुणे ई ऑफिस प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का विशेष बल दिया। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले संत समाज का मार्गदर्शन और सहयोग अल हरिद्वार में आगामी कुंभ थे दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा करी। जिला में विकास कार्यों की प्रगति थे संतोषजनक बताई। टीवी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य थे हासिल करना खुणे देहरादून जिला में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। और पौड़ी नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम को शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं लो सुसज्जित ये स्टेडियम थे खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों खुणे समर्पित करे गयु। ये का दगड़ी ही गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हुंदु। नमस्कार।
2: सदस्य 5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार साथियों, FM 100.5 MHz पर आप इस समय सुन रहे हैं देहरादून केंद्र से कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें मैं धनंजय भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम कृषि जगत के इस कार्यक्रम को लेकर हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं खेती पशुपालन आदि से जुड़ी वो जानकारियां जो आपके दिनचर्या में या खेती में काम आती हैं। साथ ही आपको विशेषज्ञ से उनकी राय और सुझाव पर भी चर्चा कराते हैं, जिससे आपको कभी भी कोई भी समस्या काम के दौरान ना पड़े, और अगर पड़े तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। चलिए साथियों, अपने इसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, अब हम बात करेंगे उड़द एवं मूंग की खेती के बारे में, जो कम समय में तैयार होने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में से एक है। किसान इससे न केवल आर्थिक लाभ मिलता है, बल्कि उसकी भूमि की उर्वरता क्षमता भी बढ़ती है। उड़द व मूंग की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। खरीफ मौसम में इसकी बुआई सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक कर लेनी चाहिए। बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए। बीजों को उपचारित करने के बाद इनकी बुआई करनी चाहिए, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर हो और रोगों का प्रकोप भी कम हो पाए। उड़द मूंग

कतार की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर से और पौधों की दूरी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर रखना लाभदायक होता है। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण भी 20 से 25 दिन के अंतराल या जब भी ज़रूरत पड़े ज़रूर करते रहना चाहिए। फसल में रोग ना लगें इसके लिए नियमित निगरानी करते रहें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं। जब अधिकांश फलियां काली पड़ने लगे या सूखने लगे तब इनकी कटाई कर लेनी चाहिए। हमारे किसान भाई खेती के बारे में ऐसी ज़रूरी बातों को अगर ध्यान में रखकर खेती करेंगे तो लाभ अधिक कमाएंगे। चलिए साथियों, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत।

0: साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त है कि भेंटवार्ता का। आइए सुनते हैं वर्गीकृत वीर से पशुधन उन्नयन डॉक्टर प्रमोद पाठक से अनिल भारती जी की पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता।
1: आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, जो कि उत्तरकाशी से हमारे बीच आए हैं और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। आज आपसे बातचीत का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्गीकृत वीर्य से पशुधन उन्नयन। डॉक्टर प्रमोद पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर प्रमोद पाठक, जैसे कि विषय है वर्गीकृत वीर्य, हम जानना चाहेंगे कि ये अवधारणा कहाँ से आई और ये अवधारणा है क्या?
2: सृष्टि का मौलिक नियम है कि वीर्य और रज के सम्मिलन से संतति, नई संतति उत्पन्न होती है। तो इसी अवधारणा को जो वर्गीकरण हुआ, वैज्ञानिकों ने बहुत ऑब्जर्व करके, बहुत गहन निरीक्षण के बाद ऐसा किया कि उन्होंने ये पता लगाया कि वीर्य के कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं नर या मादा संतति उत्पन्न करने के लिए, और शुक्राणुओं में से उन शुक्राणुओं को अलग कर लिया जो नर संतति बनाएंगे और जो मादा बनाएंगे उनको अलग कर। इस तरह से जो वर्गीकृत वीर्य है उससे यदि गर्भाधान किया जाता है तो लिंग विशेष की, जैसे नर या मादा संतति उत्पन्न होने की गारंटी हो जाएगी। लगभग 90% तक ये संभावना बलवती हो जाती है कि जो संतति विशेष है वो नर होगी या मादा होगी। जैसा वीर्य होगा वैसी ही संतति होगी। तो वर्गीकृत वीर्य से गर्भाधान की अवधारणा मूल रूप से लाभकारी है हमारे पर्वतीय परिवेश में, जहाँ जो नर संतति है वो उतनी उपयोगी नहीं होती है जितनी मादा संतति होती है। क्योंकि मादा संतति को हमने, जैसे गाय की हम यदि बात करें तो जो हम गर्भाधान करें उसकी संतति बछिया हो, तो अब नर होते हैं उसको कई बार लोग गधेरे में डाल देते हैं। हालांकि भावनाएं, चूंकि हमारा सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश इस प्रकार का है कि हमारी भावनाएं इस चीज को बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करती इस स्थिति को, इस स्थिति से बचने के लिए हमारा वर्गीकृत वीर्य है जिससे हम यदि अपनी गायों का गर्भाधान करते हैं तो केवल बछिया होगी, नर संतति उत्पन्न नहीं हो पाई। इस प्रकार हम अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे और जो अनुपयोगी खर्चा है हमारा उससे बच पाएंगे।
1: आपने गाय की बात की, हम जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी पशु प्रजातियां हैं जिनका उन्नयन इस प्रक्रिया से किया जा सकता है।
2: वर्तमान में जैसे जो हमारा उत्तराखंड सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, ये गायों में ही, गायों का वीर्य ही तैयार की, क्योंकि ये समस्या आमतौर पे गायों के साथ है, तो गायों में ही ये सुविधा उपलब्ध है कि हम वर्गीकृत वीर्य उनका उत्पादित किया गया है और जो हमारे प्रजनन केंद्र है उनमें आपूर्ति की गई है उसकी।
1: डॉक्टर पाठक, ये प्रक्रिया क्या है, किस तरह से किया जाता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को संक्षिप्त में बताएं।
2: हाँ जी, वीर्य का जो इस तरह की प्रक्रिया है, जो इसका प्रोसेसिंग है, प्रक्रम है, वो उसमें सबसे पहले संग्रहण किया जाता है वीर्य का। तो हमारे पास जैसे श्यामपुर में हमारा वीर्य संग्रह केंद्र है, उसमें जो नर सांड हैं उनका कृत्रिम रूप से, कृत्रिम वेजना के द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर की सहायता, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस कहते हैं कि संगणक आधारित वीर्य विश्लेषण, इस प्रक्रिया के द्वारा उसकी गुणवत्ता की परख भी की जाती है। और जो नर और मादा संतति उत्पन्न करने वाले शुक्राणु हैं उनको अलग कर मशीनों के द्वारा, और उसके इस तरह से जो वीर्य प्राप्त होता है वो वर्गीकृत वीर्य होता है, उसको प्रोसेस करके फिर हम जो प्रिजर्व करके सप्लाई, लिक्विड नाइट्रोजन पे प्रिजर्व किया जाता है।
1: तो सप्लाई कहाँ का किया जाता है?
2: पूरे राज्य में हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं, सारे पशु चिकित्सालय हैं, पशु सेवा केंद्र हैं, उन पे ये लिक्विड नाइट्रोजन में कोल्ड चेन बना के इसकी आपूर्ति की जाती है।
1: किसान भाई इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
2: वर्तमान में तो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल ही रहा है
1: जी,
2: और इसके अलावा जो

0: नवीनतम आयाम है इसमें, उसमें इस तरह से कहा गया है कि 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान वर्गीकृत वीर्य से किए जाए गायों में इसी वर्ष के अंदर। ये उत्तराखंड राज्य में है, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में है कि 10 लाख, वो 10 लाख गर्भाधान वर्गीकृत वीर्य से ही करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है और मिशन मोड में ये कार्य किया जा रहा है।
1: तो जो बछिया इस रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं, तो केवल हम नर और मादा में ही अंतर कर पा रहे हैं, या हम ऐसी नस्ल भी तैयार कर पा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और मौसम के अनुकूल हैं, रोगाणु रहित हैं?
0: नस्ल सुधार कार्यक्रम थोड़ा सा इससे अलग है, हालांकि इसमें भी उसका एक कंपोनेंट तो है ही, पर नस्ल सुधार की जो हमारा अभीष्ट गुण वाली संतति हो, अभीष्ट लक्षणों वाले जो हमारे नर या मादा पशु उत्पन्न हो, उसके लिए अलग से हम कार्यक्रम चलाते हैं, वो चलते हैं। यहाँ पे जो वर्गीकरण का मौलिक उद्देश्य है वो लिंग भेद ही है
1: जी। अब जानना चाहेंगे कि कुछ भ्रांतियां किसान भाइयों के मन में भी रहती हैं कि क्या कुछ इस तरह के कुछ दुष्परिणाम भी इसमें हो सकते हैं?
0: नहीं, इसमें किसान भाइयों को किसी भी शंका की आवश्यकता नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता है। बस यह है कि जो श्योरिटी है, मतलब कि 100% श्योरिटी नहीं है, 90 से 95% तक संभावनाएं रहती हैं कि मादा संतति ही उत्पन्न होगी, इतना सा है, मतलब 5% संभावनाएं इसके विपरीत परिणाम की भी रहती हैं, लेकिन वो नगण्य सा है, उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है उस चीज की।
1: अब जानना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जैसे आपने कहा किसान साथी आ सकते हैं और वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अब तक जो फीडबैक आपको मिला है, क्योंकि आप उत्तरकाशी से आए हैं, वहाँ पर इस योजना का लाभ किसान साथियों ने किस प्रकार उठाया है और क्या परिणाम रहे?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, अभी एक नई अवधारणा है ये, और साथ ही साथ जो मूल्य है इसका वो भी एक सीमाकारी लिमिटिंग कारक है
1: जी,
0: क्योंकि अभी भी ये एक डोज इसकी लगभग 950 रुपए की पड़ती है
1: जी।
0: राज्य ने इसमें अनुदान दिया हुआ है, उसके बाद ये 400 रुपए की हो जाती है। जिला योजना से भी वैसे कुछ जिलों में इसमें अनुदान मिल रहा है तो ये और सस्ता हो जाता है, लेकिन तब भी जो अवर्गीकृत वीर है, क्योंकि वो तो सरकार ने निःशुल्क कर रखा है, ये सशुल्क है, तो शुल्क थोड़ा सा एक इसमें फैक्टर है, किंतु ये बहुत ही
1: नॉमिनल है।
0: हाँ, नॉमिनल ही कहेंगे, लेकिन है तो है
1: जी। तो इसका प्रचार प्रसार किस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा नई अवधारणा है, किसान साथियों को इसके बारे में जागरूक किया जाना जरूरी है।
0: जो हमारा प्रसार कार्यक्रम है, हमारे यहाँ ग्राम स्तरीय प्रसार कार्यकर्ता होते हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी इस अवधारणा का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में जो मास मीडिया है, जैसे हमारा आकाशवाणी है या समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है
1: जी। तो आपको लगता है कि किसान साथी इस योजना का लाभ उठाएंगे, वो इसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं?
0: प्रेरणा तो मिलती है, प्रेरणा इस वजह से भी है कि ये महसूस की हुई आवश्यकता थी, फेल्ट नीड थी, और इसीलिए चूंकि समस्या थी और समाधान उन्मुख तकनीक का विकास किया गया, तो निश्चित रूप से हमारे जो भी पशुधन से संबंधित एंटरप्रेन्योर हैं, व्यवसायी हैं, वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान साथियों से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस नई अवधारणा के विषय में?
0: राष्ट्र की उन्नति में पशुधन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, खासतौर से हमारा जो पर्वतीय परिवेश है उत्तराखंड में, वहाँ तो बहुत बड़ा। आपको एक मैं बहुत शुभ समाचार भी दूँ, इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हमारे राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया है पशुधन कंपोनेंट में
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो भी सजग ही हैं, क्योंकि उनका योगदान रहता है, सभी नवीन तकनीक को वो आत्मसात करते हैं, तो इस तकनीक को आत्मसात करके भी वो अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर प्रमोद पाठक, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने वर्गीकृत वीर से पशुधन उन्नयन विषय पर बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: साथियों, अभी आपने सुनी पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता वर्गीकृत वीर से पशुधन उन्नयन डॉक्टर प्रमोद पाठक से अनिल भारती की बातचीत। साथियों, अगर आप अपनी पसंद का लोकगीत या रागनी या रेडियो पर सुनना चाहते हैं तो हेलो मंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 26 जून को दोपहर 1:30 से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। आप अपनी पसंद के लोकगीत और रागनी सुनने के लिए हमें 7088001382 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं। पशुपालन किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसलिए पशुओं का स्वास्थ्य होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर पशु स्वस्थ नहीं होगा तो आय में कमी का सामना करना पड़ सकता है। पशुओं को सबसे ज़्यादा तो खतरा होता है वो संक्रामक रोगों का होता है, क्योंकि संक्रामक रोग पशुओं में एक दूसरे से तेजी से फैलते हैं। इसमें गलघोंटू, खुरपका, मुँहपका, लंगड़ा बुखार ऐसे प्रमुख रोग हैं जिनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनको समय समय पर टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे नवजात पशु होते हैं उनका हमें विशेषकर खास ध्यान रखना होता है। पशुधन में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी जरूर करना चाहिए। पशुओं में कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो उनका तुरंत बाकी पशुओं से अलग कर उपचार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसे करने से बीमार पशु भी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और बाकी पशुओं में भी संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। चलिए साथियों, कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, 248-0001। अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:25 होने को है। आइए सुनते हैं पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत श्री मोहन नागर से बातचीत।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के, और जब ये घोषणा हुई तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं, माँ नर्मदा जयंती थी, माँ नर्मदा जी की सेवा में, स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गाँव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चलकर के काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी, और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में, और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग माह में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त है लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए। वहाँ के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हमने, हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला, गाँव में जलस्तर भी बड़ा। जिन गांवों में फरवरी में, मार्च में ही पानी समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गांव में पानी ठहरने लगा और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
2: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहां के पेरेंट्स है वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
3: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की ट्रेनिंग में, उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग बैंक के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ। फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें बच्चे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
2: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
3: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिए, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
2: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
3: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी है उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4

0: वर्षों में जहाँ 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहाँ 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहाँ गिर रहा है वहाँ पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहाँ गिरे वहाँ उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहाँ के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा उतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, जैसे वो भी इस बार बारिश आने वाली है, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारी घर पे की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30,000 से 35,000 लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं, और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है, चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश

0: में काम करने का अवसर दिया है और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जन भागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है। शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के और ये जो तीनों बातें हुई है मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गाँव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है तब तक ही हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का है, हिंदू संस्कृति का है, वो अक्षुण है, क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के वो हमारे परिवार में मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का, जल का जो मुझे संस्कार मिला वो अपने परिवार के माध्यम से मिला कि घर में शाम के समय आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है वो बच्चा को अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना इस प्रकार का वो करते हैं रात को। तो ये परिवार से सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है, ये कुटुंब व्यवस्था और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गांव रहता है। आप देखेंगे प्रत्येक गांव स्वावलंबी था, किसी गांव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे। 4 महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था, गाँव गाँव में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज फिर से हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके लिए जो एक अभियान चला है कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गांव को हमने उस रूप में लिया है, वो जनजाति गांव है। तो एक अच्छा गांव कैसे बन सकता है अपने गांव के लोगों के माध्यम से, तो बाचा गांव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गांव के रूप में गांव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श गांव के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, एक तो केस द रेन को लेकर के फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें योगदान किया था और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूँ कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ निश्चित रूप से और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं तो पानी का भी बजट बनाए कि भी हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, जरूर कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी भाषा में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नक दगड़ी मैं कुसुम पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को संत समाजक मार्गदर्शन और सहयोगल हरिद्वार मा आणवल कुंभ के दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। ग्राम विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी पिथौरागढ़ में अलग अलग विभागों की समीक्षा ले करी जिलमा विकास कामों की प्रगति के संतोषजनक बता। टीवी मुक्त उत्तराखंड लक्ष्य के हासिल करने के लिए देहरादून जिलमा स्वास्थ्य विभागक अभियान लगातार जारी और पौड़ी नगरक बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमक शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित यो स्टेडियम के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के समर्पित करीगो। और अब समाचार विस्तारल सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की संत समाजक मार्गदर्शन और सहयोगल हरिद्वार में आणवल कुंभ के दिव्य और भव्य रूप दी जाल। आज हरिद्वार में आयोजित विशाल संत सम्मेलन में उन्होंने को की सनातन संस्कृति की सुरक्षा और तरक्की में संत समाजक योगदान अतुलनीय छो। मुख्यमंत्री को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरणक नई युग का साक्षी बनो। उन्होंने को की अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धामक पुनर्विकास जस काम भारतक आध्यात्मिक विरासत के नई ऊर्जा प्रदान करनी।
2: भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, के साथ साथ जो भूमि उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर होने बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो, आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी तैयारियां हैं। सभी संत लोगों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मिला हो, अच्छा आयोजन हो।
1: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी आज पिथौरागढ़ में अलग अलग विभागों की समीक्षा कर बेर विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत जायजा ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त बनाने, स्वरोजगारक अवसरों के बढ़ावा देने और युवाओं में श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम करने यह लीजिए आवश्यक छु कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों अनुरूप योजनाओं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करूं। श्री चौधरी सरकारक जनहितकारी योजनाओं का लाभ समाजक आखिरी मनखी ताले समयबद्ध पारदर्शी और प्रभावी ढंग पहुंचाणक अधिकारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ जिल में विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक छो और ज्यादातर विभाग ये पूर्व तैयारी और जिम्मेदारी दगड़ी काम के करने। उन्होंने अधिकारियों के विकास कामों में गुणवत्ता बनाए रखन, लंबित मामलों के जल्द निस्तारण करण और दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों ताले योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश ले दी। प्रदेश में चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित होने और केले को व्यवधान नीचू। रुद्रप्रयाग जिला नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में गत 20 जून के हई घटना के संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्राल को की हेमकुंड साहिब यात्रा पूर्व तरीका सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी छू। उन्होंने कहा कि कुछ माध्यमों यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करी जा नहीं, जैक वास्तविक स्थिति कोले संबंध नाती। जिलाधिकारी स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने अपील करी कि वो अफवाहों पर विश्वास नहीं करो और केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करो।
3: नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत, और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है गुरुद्वारे के अंदर भी, शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
1: वे पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमरल स्पष्ट करो कि श्रद्धालुओं और यात्रों के गुरुद्वारे में आण जाण समान रूपल जारी छू। लंगर अरदास और दोहर धार्मिक गतिविधियों ले नियमित रूपल संचालित हो नहीं। उन्होंने लोगों ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए अपील करी।
4: मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें।
5: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: टीबी मुक्त उत्तराखंडक लक्ष्य के हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभागक अभियान लगातार जारी छो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सरमाल बता की जिल में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों के चिन्हित कर 100% स्क्रीनिंगक लक्ष्य रखी जा रहो। निक्षेप पोर्टल पर अब ताले लाखों संवेदनशील लोगों का पंजीकरण करी जानो और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हैगी। उन्होंने बता की देहरादून में हर साल 3.5 से 4 हजार टीवी सक्रिय मामल सामने आनी। ये लीजिए बीमारी बखत पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दी जानो। स्वास्थ्य विभाग द्वी नई एक्सरे मशीनों के मांगले करी ताकि स्क्रीनिंग रफ्तार और बढ़ाई जा सको और टीवी मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सको।
6: हमारी एक्सरे मशीन है, अलग अलग फैसिलिटी में है, तो वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है इसमें, तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं, उसको स्क्रीन करें। उस संबंध में लगातार हम इसको निर्देश दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इंडोर मरीज हैं या जो भी वल्नरेबल ग्रुप के हैं उनका स्क्रीनिंग जो करें, तो वो उसको बढ़ाया जा रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हम वृद्धि करेंगे और अच्छे रिजल्ट इसमें अब आएंगे। देहरादून में क्योंकि अब ऐसा महानगर है तो यहाँ निश्चित रूप से केसेस ज्यादा रहते हैं, तो एक से अगर हम बात करें तो 3500 से 4000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस जो है वो रहते हैं।
1: पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल आज नगरक बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ करो। आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित यह स्टेडियम के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के समर्पित करेगो। यह अवसर पर श्री पौरी जिलाधिकारी सराहना करते हुए कहो कि पौड़ी नगरक नई पहचान देने में उनर महत्वपूर्ण योगदान रहो। उन्होंने नागरिकों और खिलाड़ियों से स्टेडियम संरक्षण और रखरखाव में सक्रिय सहयोग देने निमंत्रण ले दी। वे जिलाधिकारी को कि स्टेडियम के उच्च मानकों के अनुरूप विकसित करी जेरो जो पौड़ी नगर रख लीजिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनल।
7: अब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया, जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया। हमारी जो वुडन फ्लोर था मेनली उसी का काम था, वुडन फ्लोर्स को मैटिंग को सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा बनाया गया और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी तो पानी आदि के भी कूलर्स और जो वाटर फिल्टर्स आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ अर्जित करें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो पौड़ी के लोकल बच्चे हैं वो यहीं पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और एक कोच भी हमारा कम था तो अभी कुछ समय पहले एक नया कोच भी बैडमिंटन के लिए रखे गए हैं, जो एक यहाँ पे स्पेशली इंडोर के लिए रहेंगे।

0: धामेल कौकी संत समाजक मार्गदर्शन और सहयोगल हरिद्वार में अणवल कुंभ के दिव्य और भव्य रूप दी जल। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी पिथौरागढ़ में अलग अलग विभागों की समीक्षा लेकरी जिलमा विकास कामों प्रगति के संतोषजनक बता। टीबी मुक्त उत्तराखंडक लक्ष्य के हासिल करनक लीजी देहरादून जिलमा स्वास्थ्य विभागक अभियान लगातार जारी और पौड़ी नगरक बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमक शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित यो स्टेडियम के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के समर्पित करीगो। ये के तगड़े ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों यह अंक इति के समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: .5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:55 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान एफएम 7.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, जिसका शीर्षक है पर्यटन। वार्ताकार है मेघा प्रकाश।
1: मैं अपने होटल के कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाथरूम के नल में पानी आने का इंतजार कर रही थी। तभी झगड़ती महिलाओं के शोर ने मेरा ध्यान खींचा। अपनी खिड़की से बाहर झांकने से 1 मिनट पहले मैंने अपने होटल के कमरे से हाउसकीपिंग को फोन करके शिकायत की थी कि नल में पानी नहीं है। खिड़की के बाहर के दृश्य ने मन में कई तरह के सवाल उठाए। होटल का कमरा सरयू नदी के किनारे था और पानी की कमी तो नहीं हो सकती। होटल में रहने वाले सभी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है, पर वहीं लोग पानी के लिए लड़ रहे थे। अब जब झगड़ती महिलाओं ने मेरा ध्यान आकर्षित कर ही लिया था, मैं उन्हें बोलते हुए सुन पा रही थी। उनमें से एक महिला अपनी बारी के लिए सुबह से इंतजार कर रही थी। सभी आकार और धातु, प्लास्टिक के बर्तन और पारंपरिक गागर उस पड़ोस के एकमात्र हैंडपंप पर पंक्तिबद्ध थे। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन स्थलों में से यह शायद एक आम दृश्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यटन राजस्व उत्पन्न करने और स्थानीय लोगों को अपने लिए थोड़ी आजीविका कमाने में मदद कर रहा है, लेकिन संसाधनों का बोझ मुख्य रूप से इन प्राचीन घाटियों में रहने वाले लोगों द्वारा वहन किया जाता है। जहां एक ओर उत्तराखंड पसंदीदा पर्यटन स्थल की तरह उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मूल निवासी आज भी पीने योग्य पानी, स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संसाधनों के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बढ़ते पर्यटन की वजह से, विकास कार्यों में आई तेजी की वजह से राज्य में मानव जनित प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में राज्य पलायन से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या 2014 में 22 मिलियन से बढ़कर 2019 में 39 मिलियन हो गई, जिसमें कोविड-19 महामारी से पहले 11.97 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर थी। हाल के वर्षों में आध्यात्मिक पर्यटन ने लोकप्रियता हासिल की है, जिससे देश भर से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, परिवहन और बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं जैसी अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसी संख्या से निपटने के लिए तैयार हैं? इस तरह की वृद्धि ने पहाड़ी राज्यों में निर्माण को बढ़ावा दिया है, जिससे अक्सर उत्तराखंड के नाजुक परिदृश्य और पारिस्थितिकी से समझौता हो रहा है। बढ़ते पर्यटन के साथ कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिनका सीधा असर जलवायु पर दिख रहा है, जैसे गहराता जल संकट। पर्यटन और होटलों के प्रसार के परिणाम स्वरूप पानी की खपत में वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य भर में कई नदियां बहती हैं, लेकिन उत्तराखंड के कई शहर और गांव जल से जूझ रहे हैं। जल संकट का कारण अत्यधिक दोहन, तेजी से शहरीकरण और रेल सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए वनों की कटाई है। 2018 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कथित तौर पर हाल के वर्षों में लगभग 12,000 प्राकृतिक झरने अब पूरी तरह से सूखे माने जाते हैं। इनमें से अनुमानित 83 झरने अल्मोड़ा जिले में है। उत्तराखंड की 90% आबादी इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों पर निर्भर है। पहाड़ों की रानी मसूरी भी जल संकट से जूझ रही है। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार 2000 से 2019 के बीच मसूरी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ पहाड़ी शहर के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। 2020 में मदन और रावत ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने पाया कि शहर के 120 ऐतिहासिक जल संसाधनों में से केवल 20 ही बचे हैं। मसूरी में रहने वाले लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब इन 20 जल स्रोतों का उपयोग 9 एमएलडी पानी पंप करने के लिए किया जाता है, लेकिन मई और जून के महीनों में मसूरी शहर में पानी की किल्लत हो जाती है। इन महीनों के दौरान पर्यटकों की आमद अधिक होती है, जिससे पानी की मांग बढ़ती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा यमुना जल आपूर्ति योजना की कल्पना की गई। जल संकट के अलावा मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन बड़े पैमाने पर पलायन, कचरा, सीवेज, भूस्खलन, तापमान में वृद्धि, जंगल की आग, पार्किंग और लंबी ट्रैफिक जैम जैसे मुद्दों से भी जूझ रहे हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है पर्यटन से जनित, वो है कूड़े के पहाड़। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1500 टन वेस्ट उत्पन्न होता है, जो पर्यटन और यात्रा सीजन के दौरान काफी बढ़ जाता है। जिला नैनीताल के कैची धाम में स्थित प्रसिद्ध बाबा नीम करोली आश्रम के कारण ये क्षेत्र एक पर्यटन आकर्षक केंद्र के रूप में उभरा है। ये क्षेत्र भवाली नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जिसका अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा संग्रहण होता है। मसूरी में आमतौर पर प्रतिदिन 15 से 18 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है और पर्यटन सीजन के दौरान लगभग 20 मीट्रिक टन हो जाता है। 2024 में दायर एक आरटीआई के अनुसार 2022 और 24 के बीच केदारनाथ मंदिर के पास 2 लैंडफिल में 49.18 टन से अधिक असंसाधित कचरा डंप किया गया था। अनुपचारित कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। 2022 में 13.2 टन उत्पन्न हुआ, 2023 में बढ़कर 18.48 टन हो गया और नवंबर 2024 तक 17.5 टन तक पहुंच चुका। केदारनाथ में सीवेज उपचार संयंत्रों की कमी के कारण कचरा सीधे मंदाकिनी में प्रभावित हो रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। कुछ गैर सरकारी संगठन और सरकारी नीतियां कूड़ा प्रबंधन में विशेष भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए, कचरे के प्रबंधन के लिए मसूरी नगर परिषद MMC ने एक गैर सरकारी संगठन कीम को घर घर से कचरा इकट्ठा करने का काम सौंपा है। जून 2024 में जोशीमठ नगर पालिका ने तीर्थ यात्रा मार्ग से 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया, जिसे पुनर्चक्रित करके 1.2 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इस प्लास्टिक कचरे को ईंटों में बदला जाता है। इसी प्रकार कूड़े से निपटने के लिए 2012 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की तत्कालीन निदेशिका ज्योत्सना सितलिंग ने गोविंद घाट में सामुदायिक भागीदारी से ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट कलेक्शन की शुरुआत की। इस पहल के तहत खच्चर मालिकों द्वारा दिए गए पंजीकरण शुल्क से निधि उत्पन्न की गई। इस धनराशि का उपयोग कचरा संग्रहण के लिए किया गया। इस कार्य के लिए भिंडार में एक गैर सरकारी संगठन इको डेवलपमेंट कमेटी को नियुक्त किया गया। बाद में इस अभियान को गोविंद घाट में भी चलाया गया। दोनों जगह कंपैक्टर मशीन लगाई गई। पर्यटकों को प्लास्टिक रेनकोट ले जाने से हतोत्साहित करने के लिए हेमकुट साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चोपता ट्रैक और गोविंद घाट के प्रवेश बिंदु पर अब किराए पर रेनकोट उपलब्ध कराए जाते हैं। कचरा इकट्ठा करने के इन पर्यावरण अनुकूल उपायों के आधार पर फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कई राज्यों जैसे सिक्किम ने प्लास्टिक कूड़ा कम करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह उत्तराखंड सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। 2024 में सरकार ने पर्यटकों और स्थानीय जनता से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक QR कोड आधारित डिजिटल डिपॉजिट रिफंड योजना DDRS शुरू की है। योजना के अनुसार QR कोड स्कैन करने पर निकटतम संग्रह केंद्र का पता चल जाएगा। प्लास्टिक संग्रहण केंद्रों पर बारकोड को स्कैन करने पर कूड़ा वापस लाने वालों को उनकी सामग्री की लागत की एक निश्चित धनराशि वापस दे दी जाएगी। ये निर्णय कुछ साल पहले रुद्रप्रयाग शहर में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के रास्ते पर लागू एक पायलट परियोजना की सफलता के बाद लिया गया। रुद्रप्रयाग जिले को प्लास्टिक सामग्री के संग्रह के लिए डिजिटल जमा योजना के सर्वश्रेष्ठ और कुशल उपयोगकर्ताओं में से एक घोषित किया गया और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। दूसरा पर्यटन से बढ़ता मुद्दा है ट्रैफिक जाम और हवा की गुणवत्ता। मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों और चारधाम मार्ग पर ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है। उदाहरण के लिए मई 2024 में केदारनाथ मंदिर के रास्ते में गौरीकुंड और आसपास के इलाकों में 8 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया था। क्रिसमस और नए साल के दौरान भी राज्य की संकरी सड़कें वाहनों से अटी रहती हैं। वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राज्य की हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य के बाहर के वाहनों पर हरित उपकर यानी कि ग्रीन सेस लगाएगी। राज्य के बाहर के पर्यटकों को वाहन के प्रकार के आधार पर 20 से 80 रुपए तक शुल्क देना होगा। ये हरित उपकर निजी और वाणिज्यिक के दोनों वाहनों पर लागू होगा। इस उपकर का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है। आशा है कि भविष्य में उत्तराखंड राज्य सरकार प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन गतिविधियों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएगी। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन है कि सांस्कृतिक अखंडता, आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, जैविक विविधता और जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और सौंदर्य संबंधी जरूरत को पूरा किया जा सके।
0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, शीर्षक था पर्यटन, वार्ताकार थी मेघा प्रकाश। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: सुनो ना।
4: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: सदस्य 5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 8:12 स्टूडियो की घड़ी से आइए सुनते हैं देशगान।

FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए हेमंत कुमार के गाए गीत।

7.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत का। आप आनंद ले रहे हैं हेमंत कुमार के गाए गीतों का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार के गाए गीत। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म थी कलाकार। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, आशा भोसले की मनमोहक आवाज में, फिल्म का नाम धरती। संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्णा और हसरत जयपुरी।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में ये गीत। फिल्म थी सरगम। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपने श्रोताओं को पुनः याद दिला दें, आप अपनी फरमाइश के पसंदीदा गीत सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे। स्पॉटलाइट कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:15 पर। इस कार्यक्रम को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
6: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
7: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
8: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक

0: डर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा।
1: सौ.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित का गाया ये गीत। फिल्म का नाम था अपनापन। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शागिर्द फिल्म से। गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर ने। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, शब्द रचना मजरूह की।

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमर प्रेम से ये कार्यक्रम का अगला गीत। धुन तैयार की है RD बर्मन ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: सदस्य 5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश सलामी फिल्म से। गीत को आवाज दी है आशा भोसले के साथ कुमार सानू ने। नदीम श्रवण का संगीत है बोल मदन लाल के। फिल्म का नाम सलामी।

आइए आपको सुनवाते हैं नवाब आरजू का शब्दित ये गीत, जिसको संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाज। फिल्म का नाम बाजीगर।

आइए आपको सुनवाते हैं नवाब आरजू का शब्दित ये गीत, जिसको संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाज। फिल्म का नाम बाजीगर।

स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में संगीत के रंगों और आपकी पसंद के गीतों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ नीलम ममगाई। और श्रोताओं, जो भी नए श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उनके लिए नंबर हम एक बार फिर बताएंगे। नंबर है 7088000731। इस नंबर पर भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम और पता लिखकर। नंबर एक बार फिर 7088000731।